0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

एक कहानी सुनोगे? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन स्वागत करती है आपका राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और एक प्यारी सी कहानी आपको सुबह सुबह सुनाना चाहूंगी मैं। वो कुछ इस तरह से कि एक रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे। एक की ट्रेन 6:30 बजे आई सुबह के, दूसरे की ट्रेन 7:15 बजे आई, और फिर तीसरे की ट्रेन जो है वो 8:45 AM को आई सुबह। ठीक है, अब कुछ ट्रेन्स फास्ट थी, कुछ ट्रेन्स काफी सारे स्टॉप्स लेते हुए आई, कुछ ट्रेन्स का पूरा रूट ही लंबा था, और कुछ ट्रेन्स जो है वो बहुत दूर के शहरों से आई है। लेकिन यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा वो 8:45 वाली ट्रेन जो सबसे लास्ट में आई कि भाई तुम 6:30 बजे क्यों नहीं आ सकते थे, तुम क्यों इतना लेट आए। क्योंकि लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन का अपना एक रूट होता है, अपना एक डिस्टेंस होता है, वो अपने स्टॉप्स कवर करके आएगी और वो उतना ही टाइम लेकर आएगी। लेकिन एज ह्यूमंस हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं, सिंपल सी बात। हम किसी और की जब अचीवमेंट्स देखते हैं या फिर उनके माइलस्टोन्स देखते हैं, जैसे कोई घर ले रहा हो, कोई बिजनेस बना रहा हो, कोई कामयाब हो रहा हो, कोई शादी कर रहा हो, और सडनली हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इन सब में। लेकिन नहीं, आप कहीं पीछे नहीं हो, आपका तो रूट ही अलग है ना। आपने थोड़ी ना कोई और स्टेशन से शुरुआत की थी ना, आपके वो सिग्नल्स थे, आपके ट्रैक्स अलग थे, आपके डिलेज अलग थे, आपका सपोर्ट अलग था, आपके वो तूफान अलग थे, तो आपका अराइवल टाइम उनके साथ ही कैसा हो सकता है। नहीं, शायद आप लेट नहीं, शायद आपका जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बस कभी कभार इस कंपैरिजन के पूरे झमेले में या फिर इस ख्याल में आप आ जाओ तो यही याद रखना कि आप लेट नहीं हो, आपका रास्ता अलग है। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ दिन की शुरुआत करते हुए मैं सिंपली आफरीन माइक से दिल तक राइटर ऑन मिर्ची आपका स्वागत करती हूँ। बने रहेगा मेरे साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट

0: हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
0: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा,
1: ठीक है,
0: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
0: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
0: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शॉप।
0: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: यो यो हनी सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स आपके साथ जुड़ गई है आफरीन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है। और भाई कल क्या था, कल शाम से मेरे ख्याल से इतनी विजिबिलिटी लो थी, इतनी ह्यूमिडिटी हाई थी। हाँ हमें पता है कि कुछ वक्त में ह्यूमिडिटी आने वाली थी हमारे कतर में, लेकिन इस तरह से ये तो ना सोचा था।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट।
1: वेल वेदर आज ये कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर इज 43 डिग्री सेल्सियस वेयर एज मिनिमम इज एट 33 डिग्री सेल्सियस। हेजी आज भी रहेगा वेदर, तो जैसे देख लीजिए अगर बहुत ही ज्यादा विजिबिलिटी कम है तो अपने प्लान्स उस हिसाब से थोड़े से पोस्टपोन कर लीजिए। ह्यूमिडिटी हाँ जी कल से और भी ज़्यादा बढ़ गई है, आज 63% पर है। देखिए हम वो फेज में थे जब ह्यूमिडिटी जो हमारी 20-30% पर थी, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि हम रियल ह्यूमिड वाले हमारे समर सीजन में एक्चुअली एंटर कर गए हैं। एट दिस पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि भाई पानी पीते रहो और हाइड्रेटेड रहो हमेशा। विद दिस मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।
0: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100-0813.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: सावरिया मूवी से ये गाना शान की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मेरे ख्याल में ना थर्सडे तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड सिंपली आफ्रीन स्वागत करती है आपका मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और देखिए आज वेनसडे ऑलरेडी है, सो लेट्स गेट गोइंग एंड प्लान योर थर्सडे, स्पेशली तब जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का इतना ज़बरदस्त नशा चल रहा है, इतना अच्छा एक्साइटमेंट चल रहा है अराउंड। एंड देखिए कतर में ऐसे ऑब्वियसली नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है एंड थैंक्स टू 2022 का वर्ल्ड कप के एक हम अगर वर्ल्ड कप से फुटबॉल से ना भी जुड़े हैं तो उसके बाद से हम जुड़ चुके हैं, है ना। सो वेल अगर वीकेंड प्लान करना है दोस्त यारों के साथ में एकदम चिल तरीके से कहीं अच्छी जगह जाकर मैच देखना है तो देखिए आप तो वैसे मैं फ्री वाली जगह बता दूं, जैसे ओएसएस स्क्रीन जो है मॉल ऑफ कतर में सबके साथ वहां पर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर देखने के लिए तो एक मजा आता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जा सकते हैं टोर्नाडो टून प्लाजा, यस ये वेस्ट पेपर है, वहां पर भी स्क्रीन लगे हैं, वहां पर भी जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं ये मैचेस। एंड ऑल्सो वी हैव एट दोहा फेस्टिवल सिटी नॉर्थ फूड कोर्ट और वेस्ट वॉक जो है वहां पर तो बहुत सारे कैफेज लगे हैं, मतलब है एक बहुत ही अच्छा वॉक वे है और वहां पर स्क्रीन्स लगे हैं तो वहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो आउट ऑफ ऑल द बेस्ट प्लेस इन कतर टू वॉच द मैच इज द विजिट कतर फैन जोन, यस ये अलमहा आइलैंड पर है एंड जहां तक मुझे पता है ये टिकेटेड है। लेकिन वही कह रही हूँ ना, अगर वीकेंड पर कुछ स्पेशली प्लान करना है कि चलो यार वहां पर और भी चीजें हैं, अगर टिकेटेड है ना तो सिर्फ वहां पर स्क्रीनिंग नहीं होगी, वहां पर और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट की जगह चीजें होगी उपलब्ध रहेगी। सो मेनी प्लेसेस आई हैव टोल्ड यू, लेकिन आप देखोगे क्या ये मैं बता देती हूँ कि अगले 24 घंटे में क्या है हमारे फुटबॉल मैचेस में क्या होने वाला है और पिछले 24 घंटे में क्या हुआ ये सब कुछ बताऊंगी थोड़ी देर में। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून विद मी, दैट इज आफ्रीन के साथ और मिर्ची। कमिंग अप नेक्स्ट फहीम अब्दुल्ला की आवाज में सैयारा का टाइटल ट्रैक, व्हाट अ सॉन्ग यार, एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे? मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
6: Hi.
5: How are you feeling right now?
6: The Josh is high. I am excited a lot.
5: How's the feeling?
6: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: कविता सेठ नीरज श्रीधर की आवाज में दिस वॉज द सेकेंड वर्जन ऑफ तुम ही हो बंधु, क्योंकि ये सेकेंड वर्जन ऑफ मूवी में भी तो आया है, कॉकटेल 2 का ये गाना। राइटर और मिर्ची, मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7:05 की तरफ। और बस इस गाने के उस पार फुटबॉल के स्कोर्स लेकर आने वाली हूँ मैं, राइटर और मिर्ची इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

देखो दोस्त, मामला अब और गर्म होने वाला है। वैसे देखा जाए तो क्वाइट लिटरली हमारे कतर में अब गर्मी और ज्यादा महसूस होने वाली है, लेकिन बात करते हैं फुटबॉल फैंस के बारे में जो वर्ल्ड कप को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो लेवल है एक्साइटमेंट का वो और कहीं पहुंच चुका है। वेल बात करें अगर पिछले 24 घंटे के बारे में, तो कल रात पोर्चुगल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराकर अपनी ताकत का जबरदस्त डेमोंस्ट्रेशन दिया है। और मजे की बात यह है दैट इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। CR7 फुटबॉल हिस्ट्री के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किया है। वेल जर्मनी 2006 से लेकर यूएसए, कनाडा, मेक्सिको 2026 तक तकरीबन 2 डिकेड्स से रोनाल्डो का नाम अब एक और रिकॉर्ड के साथ अमर हो गया है। क्या बात है भाई। वेल अगर बाकी रिजल्ट्स की बात करें तो इंग्लैंड और घाना की मैच गोललेस ड्रॉ रहा। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। कोलंबिया ने डीआर कोंगो पर 1-0 की इम्पोर्टेंट विक्ट्री रजिस्टर की। अब चलिए डालते हैं आज की मैच पर नजरें होंगी दो ग्रुप्स के फाइनल राउंड क्लैशेस पर। ब्राजील का सामना स्कॉटलैंड से होगा, मोरक्को खेलेगा हैती के खिलाफ, कनाडा और स्विट्जरलैंड की टक्कर होगी, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज कतर वर्सेज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये भिड़ने वाला है और ये मैच होने वाली है आज रात 10 बजे। वेल देखा जाए तो साथ ही मेक्सिको और साउथ कोरिया भी क्वालिफिकेशन रेस में अपनी किस्मत आजमाएगा। हर गोल, हर पॉइंट, इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी मूव इज गोना स्पीक वॉल्यूम। दिस इज फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Milci, burka. Hallå? Hallå?
2: Ja, vad fan heter du? Michael,
1: vad
2: är det? Ja, vad jag på det här? Hallå,
1: Michael, vad är det här?
2: अब मुझे मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे तुझे मुझसे कह रहा
1: अबे
2: भाई
1: ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात
2: है तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन नताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन नताशा मैं तो नताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा
2: अबे तो
1: सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने हंसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
0: एंड में आके मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

बचपन का समर वेकेशन याद है आपको? जब हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, होमवर्क की बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी और घर में सिर्फ एक ही सीजन होता था, वो था मैंगो सीजन। सुबह आम, दोपहर आम रस, शाम को आम पन्ना और मम्मी का एक डायलॉग, बस करो अब, इतने आम मत खाओ चेहरे पर दाने निकल आएंगे। वही घमोरियाँ कहते हैं हिंदी में, राइट? इंग्लिश में उसे हीट ट्रैश या प्रिकली हीट कहते थे। लेकिन बचपन में हमें किस बात की फिक्र थी, आम भी मज़े से खाते थे और वेकेशन इतनी लंबी होती थी कि रिकवर करने का पूरा अच्छे से वक्त मिल जाता था। अब मुझे लगता है कि कतर में रहने वाले लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त पर। गर्मी अपने पीक मोड में तो ऑलरेडी है और मैंगोस फुल स्विंग मोड में है और लोगों ने भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। वेल, अगर सूक वाकिफ के इंडियन मैंगो एग्जीबिशन की बात करें तो इस साल तो भाई कमाल ही कर दिया है। सिर्फ पिछले 5 दिनों में 84 टन मैंगोज बिक चुके हैं, आई मीन वाओ, जबकि पिछले साल इस ड्यूरेशन में ये फिगर 56 टन था और विजिटर्स वो भी ज़्यादा हो गए हैं। दिस टाइम इट इज़ 74,000 अब तक के, कंपेयर टू अराउंड 52,000 लास्ट ईयर, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब सिंपल सी बात है, कतर की पब्लिक ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मैंगो सीजन को हाफ हार्टेडली नहीं, इनफैक्ट होल हार्टेडली सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑनेस्टली मौका भी तो साल में एक ही बार आता है ना। अब चाहे अल्फांसो हो यानी हापुस, केसर हो, लंगड़ा हो या चौसा हो, जब सीजन आए तो उसे पूरी तरह से पूरे एंथुजियाज्म के साथ में खाकर इंजॉय करना चाहिए। ये तो मेरा मानना है कि भाई खाओ पियो मस्त रहो। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
8: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
9: Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
10: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
11: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
12: आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, गुरु की आवाज में ये गाना साथ देती हुई निकिता गांधी एंड नाउ इज द टाइम जिसका आप सभी को इंतजार है एंड यू नो इट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और देखिए भाई वो वक्त हो चला है जहां पर मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ डायलॉग सुनाने वाली हूँ रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से डायलॉग सुनो और बताओ कौन सी मूवी से है एंड ढूंढ ढांड कर आज डिफिकल्ट वाला लाई है आफरीन
2: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट
3: विक्रम स्टारडम एक कॉकटेल है फेम पावर मनी बहुत खतरनाक नशा है
4: I can't even imagine what it must be like
3: Yeah, it's insane लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी तुमने मत भूलो ये तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे
1: और All right, कौन सी मूवी है ये एंड आई एम सो श्योर कि आपने ये आवाज तो पहचान ली है लेकिन एक इतना सा हिंट दे दूं कि इनकी जो आवाज है ना ये इस मूवी में एक कैमियो बस रोल निभा रहे हैं इनका कोई मेन किरदार नहीं है जो दूसरी हल्की सी आपने आवाज सुनी थी ही इज द मेन लीड ऑफ दिस मूवी अब दो आवाज तो इतनी तो पहचान ली होगी ना भाई बॉलीवुड के बड़े फैन हो दिग्गज हो आप 5000186 इज माई नंबर लेट्स कनेक्ट हियर एंड टेल मी विच मूवी एम आई टॉकिंग अबाउट तब तक के लिए अगला गाना आपके लिए अंकित तिवारी की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
2: Hi.
3: How are you feeling right now?
2: The Josh is high. I am excited a lot.
3: How's the feeling?
2: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे. मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: जोश ब्रार परंपरा टंडन की आवाज में ये गाना राइट योर ऑन मिर्ची वेल सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई आज ना ढूंढ के इतना डिफिकल्ट सवाल मैं लेकर आई थी और मुझे लगा ही कि आपका आंसर करना यहाँ पर मुश्किल होगा। बहुत सारे गलत जवाब आए हैं और आज गिन के सिर्फ दो लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। वेल और भी लोग हो सकते हैं जो अब फिलहाल हमारे साथ जुड़े होंगे जो सही जवाब देने वाले रहेंगे। वेल कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ, सीन सुना रही हूँ, सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम को हाई, सीन सुनो और बताओ आखिर ये कौन सी मूवी से है।
1: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: Stardom ek cocktail hai. Fame, power, money. Raat khatarnak nasha hai.
3: I can't even imagine what it must be like.
2: Huh? It's insane. Lekin ek baat maine bahut jaldi samajh li thi. Tumne mat bhoolo. Ye tumhe tab jante the.
0: Alright, a very good lesson indeed. ठीक है, स्टारडम के बारे में या फिर सक्सेस के बारे में। और इसमें ये जो डायलॉग कह रहे हैं वो इसमें कोई भी लीड रोल में नहीं है, इनफैक्ट इट्स जस्ट अ कैमियो, इनफैक्ट ओनली फॉर द सीन। और इनका कैमियो इतना पावरफुल होता है ना कोई भी मूवी में कि आप भले ही वो मूवी ना देखे हो लेकिन आपको उनका ये किरदार कैमियो याद रह जाता है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी अब और भी आ रहे हैं। 5000196 वैसे मेरा नंबर है। और दो एक्टर्स की आवाज़ अगर आपने पहचान ली है ना तो इट्स ईजी टू गेस विच मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे यहाँ पर अब्दुल रज्जाक बता रहे हैं कौन सी मूवी है, हुज़ैब का बिल्कुल सही मैसेज आया है। देन आई हैव योर हु इज इट चीनू वॉज द फर्स्ट वन टू गेस दैट आफ्टर यू जो मूवी की बात कर रहे हो। अब सुनील देव का भी मैसेज आया है, इट इज़ लक बाई चांस एंड आई डोंट थिंक सो कि आपने बाई चांस ये गेस किया होगा क्योंकि यार ये इतना डिफिकल्ट डायलॉग था, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। एंड जैसे मैं यहाँ पर कह ही रही हूँ, निशा का भी मैसेज आया है सेइंग द सेम थिंग, इट्स लक बाय चांस। तो यार आज तो तालियां आपके लिए बजनी चाहिए दोस्त। ठीक है, फरहान अख्तर की वन ऑफ द स्टार्टिंग की मूवीज है ये, जहाँ पर इन्होंने एक्चुअली अच्छी एक्टिंग की है। यस, आई लाइक फरहान अख्तर एज एन एक्टर बाय द वे। शंकर महादेवन इलेवन की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी लग माय चांस। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mix. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Check. अरे हाँ रे मामू, Mirchi Helpline. बता, सवाल क्या है?
1: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद. क्या करूँ?
2: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी नहीं.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस Mirchi हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

देखो एक जमाना था जब पेरेंट्स हमें कहते थे एक ही डायलॉग, बेटा बस पढ़ लो, डिग्री ले लो, बाकी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम में लेट मी टेल यू, डिग्री मिलना और करियर मिलना दोनों अलग अलग बैटल्स बन चुकी है। और शायद इसी चैलेंज को समझाते हुए कतर ने काफी विजनरी और फ्यूचर फोकस्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने मिलकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ये अनाउंस किया है। देखिए ये जो है ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्लान है 2026-27 का। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तो कतर के फ्यूचर डिजिटल लीडर्स जो है, ऐसे यंगस्टर्स जो AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में कंट्री को लीड कर सके। और ये कोई ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप नहीं है, लेट मी टेल यू, अगर आप अप्रूव्ड प्रीमियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं तो आपको 20,000 कतरी रियाल तक मंथली स्टाइपेंड, साल में दो बिजनेस क्लास टिकट्स, स्टडी पीरियड को सर्विस ईयर्स के तौर पर रिकग्निशन और डिपार्चर से पहले 40,000 कतरी रियाल तक सपोर्ट अलाउंस मिल सकता है। I mean, that's amazing. इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी ट्रैक्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स काफी इंप्रेसिव है। उन्हें 14,000 कतरी रियाल तक मंथली अलाउंस, एनुअल ट्रैवल टिकट्स, ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स कतर के अप्रूव लोकल यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिटी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं राइट ईयर, उनके लिए ट्यूशन कवरेज जो है और मंथली स्टाइपेंड्स भी अवेलेबल होगा। अगर अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की चलिए बात करते हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 80% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी ब्रिजिंग प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरसीज स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स को अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से फाइनल अनकंडीशनल एडमिशन सिक्योर करना होगा। मेरी नज़र में ना दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी पावरफुल। ये स्कॉलरशिप सिर्फ फीस भरने के लिए नहीं है, इसमें इंटर्नशिप है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, टेक्नोलॉजी इवेंट्स है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेजुएशन के बाद करियर पाथवे है। अब दिस इज़ एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सच सेक्टर, द डिजिटल AI सेक्टर, द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर। तो बस काफ़ी काम की न्यूज़ है, आपके रडार में होनी चाहिए अगर आपके जानने में ऐसा कोई स्टूडेंट है तो। मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन विद यू, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello. Hello.
4: Hello, Mr. Anil.
3: हाँ जी.
4: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
3: तीनों आ गए?
4: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
3: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
4: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
3: हाँ जी, फिर?
4: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
3: हेलो.
4: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
3: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई. आप गलत मिला है.
4: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
3: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
4: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
3: कौन बोल रहे भाई?
4: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
3: भड़क रहा हूँ भाई, क्या तरीका है?
4: क्या तरीका
3: कर रहा है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
4: अनिल बंसल आप ही हैं.
3: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
4: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
3: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
4: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
3: बात करो, एक तरीका बात करने का
4: यार, तरीका. आप
5: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
3: मैं काम कर रहा हूँ बैठा, वो आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठ कर.
4: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है,
3: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
4: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
3: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
5: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
3: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

0: अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:28 पर।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और देखिए क्या है ना भाई, गर्मी तो आ गई है और साथ ही साथ ये जो सडन गर्मी, ह्यूमिडिटी और हमारे बॉडी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, कि आप कुछ देर के लिए ठंडी में होते हो, कुछ देर के लिए गर्मी में जाते हो, उस वजह से बॉडी आपकी कंफ्यूज होकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। सो ये ध्यान में रखिएगा भाई, ये जो ठंडी गर्म वाला जो सिलसिला है, थोड़ा सा संभाल के एकदम से गर्मी में ना जाए, बॉडी को थोड़ा सा वार्म होने की कोशिश करें, या फिर एकदम से ठंडा पानी ना ही पिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डैमेजिंग टू योर किडनीज, सीरियसली। सो वेल, हैविंग सेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर वक्त हो चला है कि मैं आपको अब हमेशा की तरह एक्सचेंज रेट सुनाऊँ। वेल, आज के एक्सचेंज रेट ये कह रहे हैं दैट 1 और 3 रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 25.98 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस जनाब इट इज़ एट 76.74। वही बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.83 पर है, श्रीलंकन रुपीस इज़ एट 91.94 और नेपाली रुपीस इज़ एट 41.49। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियाँ, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
7: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
8: अर्ज किया है
9: इरशाद। इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईबी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार. मतलब कुछ गानों के बाद में आप स्पीचलेस हो जाते हैं एंड यू डोंट वांट देम टू फिनिश. दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स. एआर रहमान की ये कॉम्पोजिशन, एआर रहमान की आवाज, वेनी दयाल का साथ और साथ देते हुए तन्वी. राइट यू ऑन मिर्ची आपके साथ जुड़ गई है. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है और साथ है आपका. तो बस अब तो मुझे अच्छा ही लगता है जब इस वक्त पर ना टू वे कम्युनिकेशन होता है. नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं इधर से बातें करते रहती हूँ, तो अब जब आपके मैसेजेस आएंगे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. सो वेल, कल से मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया है मेरे गेम में. चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ, राइट. जहाँ मैं आपको पहले कहानी सुनाती थी, अब मैंने सोचा कि मैं आवाज़ें सुनाऊंगी. आवाज़ उन एक्टर्स, एक्ट्रेस या बॉलीवुड से जुड़े हुए किसी भी इंसान की, और आपको गेस करना है कि आखिर आफरीन किसकी आवाज़ सुना रही है, कौन है ये शख्सियत. सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से दोस्तों इनकी आवाज़ सुनो, ठीक है.
1: To wear spectacles, I had a unibrow. Yeah, I plucked my eyebrows at school because I was skinny. I was also short. I believe you only become fearless when you have seen a lot of failures in life. I have seen a lot of failures in life. I've always been an underdog. I used to have braces. Used to wear spectacles. I had a unibrow. Yeah.
0: All right. कौन है? कौन है ये? बताइए मुझे. 5000 1896 इज माई नंबर. ये आवाज़ जो आपने सुनी है बॉलीवुड की किसी इंसान की है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में से, लेकिन कौन है? एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस हियर जो गलत है. मैं बता देती हूँ किसका गलत है. यहाँ पर अपना नाम भी लिख लिया करो भाई. मोहम्मद शाहिद जो आप सोच रहे हो ये वो नहीं है, लेकिन चार्ली जब जो आप सोच रहे हो ना ये वही है, बिल्कुल सही है. सो विद दिस आफरीन आपके साथ यहाँ पर रहेगी, लेकिन साथ में अरिजीत भी होंगे, शालमली कोलगड़ी भी होगी और शेफाली भी होगी. अगले गाने में इंजॉय कीजिएगा. माइक से जल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
7: Hi.
6: How are you feeling right now?
7: The josh is high. I am excited a lot.
6: How's the feeling?
7: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और ये जबरदस्त सा गाना आई नहीं भाई आ गई मैं, सवाल लेकर भी आई है और जिसका जवाब आपके पास नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हाँ जी, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है, जहां आफरीन को इस वक्त पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा ही मजा आता है। यस, आप मैंने ना थोड़ा सा मेरा गेम का पैटर्न थोड़ा बदल दिया है, जहां मैं आपको अब डायलॉग्स भी नहीं सुना रही हूँ फिलहाल, तो वो तो 7 बजे के आवर में सुनाती हूँ, कहानी भी नहीं सुना रही हूँ, अब मैं आपको आवाज़ें सुना रही हूँ ऐसे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों की, जो मैं देखना चाहती हूँ कि भाई इंटरव्यूज है उनके वो सुना रही हूँ, उससे आप गेस कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से ये सुनो।
1: Rose school, but yeah,
2: you still pluck your eyebrows.
1: Yeah, I do that. It's but I think if you've seen a lot of failures in life, like I've failed in auditions, and there were times in school when I was like desperate to do theater. I was not getting the leading role because I was skinny. I was also short. I used to pray to God every day, Bhagwan, mujhe 5 feet 9 inch ka bana do, and he just stopped me at 5'9.5".
2: See, you get what you ask.
1: Yeah.
0: All right. बताइए कौन से एक्टर है ये? बहुत सारे लोगों के मैसेजेस गलत आए हैं इसमें कि यहाँ पर वो कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, हाइट कम है तो थोड़ी ना वरुण धवन होंगे, अब्दुल रजाक, जहाँ शाहिद कपूर हाइट कम है तो आप लोग को लग रहा है शाहिद कपूर होंगे, शाहिद कपूर भी नहीं है। और क्या उनसे मैसेजेस आए हैं, टाइगर श्रॉफ, किसी ने टाइगर श्रॉफ भी कहा है। सो वेल, बहुत सारे गलत गलत आंसर्स के बीच में यहाँ पर अब रोहित का मैसेज आता है जो बिल्कुल सही आता है, एंड ही सेज दिस इज आयुष्मान खुराना। क्या बात है भाई, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि देयर वर सो मेनी गेसेस यहाँ पे। आउट ऑफ दैट चार्ली ने आयुष्मान खुराना कहा, यहाँ रोहित ने आयुष्मान खुराना कहा, बाकी सब ने कुछ कुछ कुछ अलग ही कहा है। सो ऑन दिस नोट, मैं यहाँ पर आयुष्मान खुराना का बहुत ही अंडररेटेड आई वुड से बहुत ही अच्छा गाना ये सुनाना चाहूंगी। नीति मोहन के साथ में ये गाना है आयुष्मान खुराना की आवाज में।

0: यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन। टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

देखो दोस्त, मामला अब और गर्म होने वाला है। वैसे देखा जाए तो क्वाइट लिटरली हमारे कतर में अब गर्मी और ज्यादा महसूस होने वाली है, लेकिन बात करते हैं फुटबॉल फैंस के बारे में जो वर्ल्ड कप को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो लेवल है एक्साइटमेंट का वो और कहीं पहुंच चुका है। वेल, बात करें अगर पिछले 24 घंटे के बारे में, तो कल रात पोर्चुगल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराकर अपनी ताकत का जबरदस्त डेमोंस्ट्रेशन दिया है। और मजे की बात यह है दैट इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। CR7 फुटबॉल हिस्ट्री के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किया है। वेल, जर्मनी 2006 से लेकर यूएसए, कनाडा, मेक्सिको 2026 तक तकरीबन 2 डिकेड्स से रोनाल्डो का नाम अब एक और रिकॉर्ड के साथ अमर हो गया है। क्या बात है भाई। वेल, अगर बाकी रिजल्ट्स की बात करें तो इंग्लैंड और घाना की मैच गोललेस ड्रॉ रहा। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। कोलंबिया ने डीआर कोंगो पर 1-0 की इम्पोर्टेंट विक्ट्री रजिस्टर की। अब चलिए डालते हैं आज की मैच पर नजरें होंगी दो ग्रुप्स के फाइनल राउंड क्लैशेस पर। ब्राजील का सामना स्कॉटलैंड से होगा, मोरक्को खेलेगा हेटी के खिलाफ, कनाडा और स्विट्जरलैंड की टक्कर होगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज कतर वर्सेज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये भिड़ने वाला है और ये मैच होने वाली है आज रात 10 बजे। देखा जाए तो साथ ही मेक्सिको और साउथ कोरिया भी क्वालिफिकेशन रेस में अपनी किस्मत आजमाएगा। हर गोल, हर पॉइंट इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी मूव इज गोना स्पीक वॉल्यूम। दिस इज फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची।
1: देखो जब संजू राठौर को ये फॉर्मूला समझ आ गया है तो आपको क्यों नहीं। देखो भाई एक के बाद एक ये सुपरहिट गाने दे रहे हैं। फॉर्मूला सिंपल है, लड़कियों की तारीफ करो, कभी उनकी बैंगल की, कभी उनके साड़ी की, कभी उनके लिपस्टिक की, कभी उनकी कमर की, और बस लाइव सेट है। बस फिलहाल तो आपके ड्राइव सेट है मेरे साथ यानी आफरीन के साथ, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:11 की तरफ, और अरिजीत सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं ऑन मिर्ची हॉट।
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Mirchi. Iskaba la puskaba na sakaba na. Rabala. Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: बेटा आप घर आ जाओ, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जाओ, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए बोल कौन रहे हो?
2: देख आपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा।
1: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
1: अरे अंकल ये तो बताइए आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
1: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटे नहीं ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
1: माता जी से बात करा दीजिए।
2: बेटे आजा आजा बेटे।
1: अंकल माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
2: बेटे कोई गलती हुई है देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
1: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: अरे बात मेरे बात,
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
1: हेलो
2: बेटे। हेलो
1: अंकल आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: बेटे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल मेरे बात कर, बेटा नहीं मैं। अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज आपने नंबर क्या मिलाया?
2: तो कान पर सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
1: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो मैं फोन तो करना पड़ता बेटे,
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
1: भाई मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: देखो कभी कभी वीकेंड का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि कहाँ घूमने जाना है, ये भी होता है कि भाई हमारा रिमोट कौन से ओटीटी ऐप पर अब आके रुकेगा। और अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हो जहां पर टीवी चालू करने के बाद 20 मिनट तो सिर्फ आप स्क्रॉल करते हो, ये सोचते हो कि क्या देखा जाए और उसके बाद में कुछ पुराना सा ही लगा देते हो, देन दिस इज फॉर यू।
1: अरे भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल देखिए ओटीटी मार्केट में बहुत कुछ नया आया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 के बारे में। टीवीएफ की मेकिंग है तो समझ जाइए वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत बनाया है। एंड अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है ना, इट इज रियली नाइस, फनी भी है, एट द सेम टाइम इट हैज एम्पैथी, लाइक पंचायत बताता है, बस उसी लाइन पर है, स्टोरी टेलिंग स्मॉल टाउन की है, रिलेटेबल कैरेक्टर्स है, तो ये सीरीज आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। एंड इस बार डॉक्टर प्रभात की जर्नी और भी चैलेंजिंग होने वाली है, विद करप्शंस, इमोशंस और विलेज लाइफ के रियल इश्यूज। कमिंग अप नेक्स्ट, अगर आप फैमिली ड्रामास के फैन हैं बिल्कुल मेरी तरह, गुल्लक के फैन एंड सो मेनी मोर, देन देयर इज वन मोर थिंग दैट इज परफेक्ट फैमिली सीजन 2, ये भी सोनी लिव पर आने वाला है एंड दिस कुड बी योर परफेक्ट बिंज पार्टनर। कॉमेडी भी है, केओस भी है और इस तरह से जो फैमिली ड्रामास होते हैं ना कहीं कोई सीन्स में आपको अपनी फैमिली नजर आती है। सो फैमिली, परफेक्ट फैमिली सीजन 2 ऑन सोनी लाइव, दिस इज वन थिंग। उसके अलावा अगर आपको रियलिटी शोज में स्ट्रैटेजी माइंड गेम्स में और ट्रस्ट इश्यूज देखने का शौक है तो अलायंस जरूर चेक करिएगा। कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जहां दोस्ती भी होगी, डिप्लोमेसी भी होगी और बिट्रेयल भी होगा, मतलब समझ जाइए कुछ बिग बॉस और सर्वाइवर्स के फैंस यहां पर मिल गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। नाउ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ओटीटी कंटेंट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, आजकल हर जॉनर का अपना एक इकोसिस्टम है। एक तरफ विलेज इंडिया की स्टोरीज चल रही है, दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल फैमिली ड्रामास चल रहे हैं, तो तीसरी तरफ स्ट्रैटेजिक रियलिटी फॉर्मेट्स चल रहे हैं। ऑडियंस का टेस्ट भी अपना काफ़ी इवॉल्व होते जा रहा है, राइट? सो आप बताइए मुझे कि आप इनमें से क्या चूज करते हो और वॉट इज योर प्रेफरेंस जनरली व्हेन यू वॉच ओटीटी, रोमांटिक, क्राइम सीरीज, फैमिली ड्रामास या कुछ और ही? 5000-1896 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट योर। मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची माइक से दिल तक आप रीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।
4: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
6: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं, बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: कभी कभार अपने इमोशंस, अपनी बातें, एहसास, ये सारे लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये शायर लिरिसिस्ट बखूबी जानते हैं ना। इसीलिए कभी कभार कहते हैं ना कि गाने आपके इमोशंस को बहुत ही बखूबी पेश कर देते हैं। और ये मैजिक कैसे होता है? ये मैजिक उन लिरिसिस्ट की वजह से होता है जैसे जावेद साहब है, इरशाद कामिल है, गुलजार साहब है। और आज मेरी डायरी से मैंने गुलजार साहब की कुछ लाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: तो अर्ज किया है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो मुझे बितानी है तेरे बगैर, एक उम्र है जो मुझे बितानी है तेरे बगैर, और एक लम्हा है जो मुझे गुजारा नहीं जाता। क्या बात है, गुलजार साहब ऑलवेज सरप्राइजेस अस एंड टेल्स अस हमारी फीलिंग्स उनके शब्दों में। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: मित्रास की आवाज राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ आफरीन, और आप जानते हो यार इस वक्त पर आफरीन के साथ में जुड़ती है वो आवाज जो सिर्फ आवाज से ही प्यारी नहीं है भाई, पूरी तरह से प्यारी है, मीठी मीठी सी है, जिसे हम मीठी मिर्ची अंशु कहते हैं।
1: क्या बात, क्या बात, क्या वो कहते हैं ना कि इंसान खुद जैसा
0: चॉकलेट
1: होता है उसे दूसरे भी वैसे
0: क्या मिलेगा,
1: तारीफ मिली ना
0: मिलेगा
1: तुम्हें भी तारीफ
0: तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई तारीफ करते रहो दूसरों की, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये सच है। एंड यार जिंदगी में कुछ करो ना करो यार, औरों के बारे में, खुद के बारे में, हर किसी के बारे में ना अच्छा सोचते रहो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। एंड आपकी पर्सनैलिटी से जो भी चीज़ें जिस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, आसपास का एनवायरमेंट भी वैसा ही बनता है। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंक गुड, टू बिहेव गुड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू Be good.
0: Yes. और मैं अक्सर अंशु जब भी मैं मेरा शो खत्म करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि खुश रहो, क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो आपके आसपास का जो वातावरण, यू सी द वाइब, द वातावरण स्टेज वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव। सो ऑन दैट नोट, दो आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ गए, और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, गाना चाहिए, वो भी आएगा, लेकर आएगी, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी सी मस्ती मजाक हो जाए। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन, टाटा बाय बाय, सायोनारा,
1: एंजॉय,
0: इट्स हॉट।
2: मिर्ची हेल्पलाइन,
3: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
2: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ।
3: क्यों थक रहा है, अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

वल्लभा त्रिवेदी की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, इतना सूदिंग सा प्यारा सा गाना, ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये खास बात भी इस वक्त आप तक पहुंचा दी जाए। Hello, very good morning. Welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास है साथ ही स्पाइस का तड़का और अंशु का साथ है, इससे ज्यादा आपको चाहिए तो क्या ही चाहिए। और राइट, इस वक्त अगर आपके बीच एक खास बात पेश करने की कोशिश करूँ तो यार, आज सुबह सुबह ना मैंने कुछ तो पढ़ा एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ा, जिसमें लिखा था कि ना इंसान की एक फितरत होती है, उसका एक बेसिक नेचर होता है कि वो चीज़ों को वैल्यू करता है, काफ़ी करता है, लेकिन तब करता है जब उसे महसूस होने लगे कि कोई चीज़ जो है उससे दूर जा रही है, फिर चाहे कोई शख्स हो, उसका कोई फेवरेट सामान हो, या तो फिर ये कह ले ऐसा कोई जॉब हो या कोई प्रोफेशन हो जो रहते रहते हमने शायद उसे एक्नॉलेज ना किया, रिकोगनाइज नहीं किया, लेकिन जब वो दूर जाता है ना तब समझ में आता है कि भाई नहीं यार, कमाल था और अच्छा था। यार एक ही बात कहना चाहूंगी, जब कभी जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस हो ना कि भाई ये जो है ये ठीक नहीं है, इंसान जो है ये ठीक नहीं है, काम जो है ये ठीक नहीं है, मेरा जो घर है वो ठीक नहीं है, जरा ये सोचने की कोशिश करना कि अगर वही चीज से आपको महरूम कर दिया जाए, यानी कि वही चीज को आपसे दूर कर दिया जाए, तो ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें उसकी दरकार होगी। जब ये बात रियलाइज होने लगती है ना, तब समझ में आता है कि जो है अच्छा है, अगर कुछ करना है तो उसे दिल से एक्सेप्ट करते हुए और अच्छा करने की कोशिश करना है। चलिए जी, आज सुबह सुबह आपको ज्ञान तो बहुत दे दिया, अब एक प्यारा सा गाना भी सुना दो, श्रुति रानी की आवाज़ यानी अगला गाना, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर रही, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, जिसमें मेरी क्या गलती है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शिल्पा राव की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, ये पावर पैक गाना फ्रॉम द फिल्म वॉर, ये तो मैंने आपको सुना दिया। लेकिन भाई कहते हैं ना, खेल हो या जंग, यहाँ पर सब कुछ जायज। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aryanshu with you. अगर खेल की बात करें, कल के मैच की बात करें, क्या शानदार नजारा। And I'm talking about the game that was played between Portugal and Uzbekistan, जहां पे पोर्चुगल को मिली एक शानदार जीत 5-0 से। लेकिन देखिए, बात इतनी है ना कि पोर्चुगल की जीत जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, लेकिन नजर अगर सबकी किसी पर थी तो वो है सिर्फ एक शख्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो। खासकर अगर इस सीजन में उनके परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करें तो पिछले मैच के बाद बहुत सारे स्पेकुलेशन होने लगे थे, सोशल मीडिया में इतने सारे मैसेजेस मीम्स फ्लड की तरह आ पड़े थे। लेकिन कल एक बार फिर से जब वो अपने पूरे फॉर्म में आए, फॉर्म में आने के बाद दो गोल स्कोर किया, उसके बाद उन्होंने एक ही बात कही पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, दैट आई एम बैक। एंड दैट वॉज बेसिकली अ मैसेज उन सारे लोगों को जिन्होंने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की या ये कहने की कोशिश की कि अब इनकी उम्र जो है ना वो गुजर चुकी है और इनकी टीम जो है सिर्फ और सिर्फ इनको संभाल रही है। अब यहां पर ना एक बात है यार, अगर आप पूरे के पूरे सिनेरियो को देखने की कोशिश करेंगे कि अब तक जब मेसी ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया तो सोशल मीडिया में अगर सब कुछ कुछ था, कुछ फ्लडेड था, तो वो मेसी की वाहवाही। कल जब रोनाल्डो ने स्कोर किया तो उनकी वाहवाही। एंड कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऐसा है जो एक ही काम करता है कि एक को नीचे दिखाता है एंड दूसरे को ऊपर उठाता है। यहाँ पे ना मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप मेसी एंड रोनाल्डो दोनों की जर्नी को देखने की कोशिश करेंगे तो भाई फुटबॉल जगत के दोनों इतने कमाल के खिलाड़ी हैं कि यार एक को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है। किसी एक के ऊपर उठने से ना ही दूसरे की ग्रेटनेस कम होती है और किसी के एक के अच्छा खेलने से ना ही किसी और का गेम बिगड़ता है। तो ये राइवलरी आप जो है अपने मोटिव्स के चलते आने वाली जनरेशन के दिमाग पे तो ना फैलाएं। इतना ही कहना चाहूंगी यार, अच्छा काम चाहे दुनिया में कोई भी करे, क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर उनकी तारीफ ही करें। आप सपोर्ट एक पर्टिकुलर टीम को कर सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर आने पर किसी और को नीचा ना दिखाएं। और ये बात सिर्फ खेल के मैदान में नहीं, जिंदगी में भी इक्वली लागू होती है, जरा सोच के देखिएगा। स्टेडियो टू मर्ची बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: आमिर खान ने अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ और लवली ट्रैक इज़ फ्रॉम द फिल्म सरफरोश। मतलब आमिर खान की आवाज़ जो है गाने में भी अच्छी लगती है ना।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मी टीम मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विद यू। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने फिर से आ चुकी हूँ एंड कोई तो स्पाइसी सी खबर है जो इस वक्त आपके बीच में पेश कर ही दूँ। चूंकि आमिर खान का जिक्र हुआ है तो शायद आपको पता ना हो, तो जल्दी से ये बता दूँ कि एक बार फिर से हमारी जिंदगी में वक्त आ चला है कि हम जो है ना आमिर को मुबारकबाद दें। लेकिन किस बात की भाई साहब, उनकी शादी की। तो अगर आपको नहीं पता हो तो भाई रिपोर्टेडली आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट से भाई तीसरी दफा शादी करने का डिसीजन जो है वो ले लिया है। 5 जुलाई को इनकी शादी होने वाली है। नहीं, एक ही बंदी से 3 बार शादी नहीं किया है, ये तीसरी बंदी जिनसे शादी करने जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब ये गजनी में अपना किरदार निभा रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में ना इसे बहुत सीरियसली अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन ना, ये बेसिक चीज़ें नहीं भूलते, ये हर 15 साल में अपनी बीवी को भूल जाते हैं। उसके बाद लगता है कि हाँ बीवी नहीं है तो नई बीवी की तलाश करते हैं। जोक से पार यार, हर किसी की अपनी पर्सनल एक लाइफ होती है, उनकी ज़िंदगी क्या मसले हैं बस वही जानते हैं। एंड इवेंचुअली बात इतनी ही है कि इंसान को खुश रहना है, किसी भी हाल में रहें, उम्र के किसी भी पड़ाव में रहें, उसे खुश रहना है। फिर चाहे वो किसी के साथ से मिले या अकेले रह के मिले। वो कहते हैं ना यार कि एक उम्र के बाद इंसान को साथ की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हम जो है यूजुअली एक टैबू मानते हैं कि भाई इतनी बड़ी उम्र में भी इसने शादी की। अरे क्यों नहीं भाई, उसकी ज़िंदगी है, जब उसे अकेलापन महसूस होगा तो क्या तुम आओगे उसे कंपनी देने? नहीं ना यार। तो कोई जो कर रहा है अगर वो अपने हिसाब से सही कर रहा है तो उन्हें उनकी ज़िंदगी हम जीने दें, लेकिन ना जजमेंटल ना बने। तो ये आमिर, आपकी शादी की आपको बहुत बहुत बधाई। हमने आपके और में अच्छी अच्छी बातें भी कही। कुछ करो ना करो यार, बस शादी में बुला लो। हमने 3 डेट्स में सीखा है आपसे कि खाली लिफाफा ले जाकर अच्छा खासा प्लेट भर खाना कैसे खाते हैं। जरूर हम ऐसा कुछ फॉलो करेंगे, आप ही से सीखा। कविता सेठ की आवाज अमिताभ भट्टाचार्य का साथ, ये अगला गाना आप तक पहुंचाते हैं। और आमिर खान की शादी की दावत जो है ना, हो सकता है हम कतर में भी आपके लिए करा ही देंगे। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा, 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

मेसी। भाई साहब जब जब फुटबॉल की बात हो, जब जब फीफा वर्ल्ड कप 22 की खास खास बात हो, तो यार एक शख्स ऐसा है जिसका नाम सबसे ऊपर आएगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी। एंड आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे, लेकिन ये एक दुनिया का ऐसा शख्स है जिसे शायद इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। अगर फुटबॉल की लैंग्वेज है तो लियोनेल मेसी उस लैंग्वेज की सबसे खूबसूरत पोएट्री। अगर आज मेसी को देखने की कोशिश करें तो 38 साल के वो हो चुके हैं, लेकिन सच कहूं यार, उनका इम्पैक्ट नंबर से आप मेजर कभी नहीं कर सकते। एक ऐसा प्लेयर जिसने फुटबॉल फैंस को सिर्फ ट्रॉफीज नहीं दी बल्कि इमोशंस दिए। एक ऐसा प्लेयर जिसने दुनिया को सिखाया कि ग्रेटनेस हमेशा, भाई साहब, लाउड नहीं होती, शोर से नहीं होती, वो कभी कभी कामनेस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ और साइलेंस के साथ भी आती है। बैलेंडोर्स की बात करूं, चैंपियन लीग टाइटल्स की बात करूं, लीग चैंपियनशिप्स की बात करूं, कोपा अमेरिका की बात करूं, भाई एक ऐसा सपना जिसका पूरी दुनिया को इंतजार होता है, अगर मैं उसकी बात करूं यानी कि फीफा वर्ल्ड कप, ऐसा कोई तो खिताब हो जो शख्स ने अपने नाम ना किया। एंड जब इस शख्स ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई ना, तो जीत सिर्फ अर्जेंटीना की नहीं हुई, हार उस एक शख्स की हुई जिसने मेसी के साथ खुद पर यकीन करना सीखा। लेकिन यार मेसी की कहानी जो है ना, वो ट्रॉफी से कई बड़ी। एक छोटे से लड़के की कहानी जिसे ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी थी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके सपने उसकी सर्कमस्टेंसेस से बहुत बड़े थे, और फिर वही बच्चा दुनिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉल आइकन बना। आज बहुत आए बहुत गए, लेकिन अपने सपने को हर हाल में पूरा करने की जिद लिए और अपने मकाम को पाने की मंजिल में चल पड़े, बहुत कम लोग सही मायने में हुए, और वो उसमें से एक है, लियोनेल मेसी। एंड वी फील सो प्राउड कि शख्स को हमें लाइव अपनी आंखों के सामने देखने का मौका मिला, उस सपने को जीने का मौका मिला। सो टू ऑल द मेसी फैंस, हैप्पी बर्थडे। भाई साहब आज तो हमारा दिन, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: सच कहूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है ना, तो इतना समझ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aarti Anshu with you. यार कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा हम पर भरोसा करते हैं। जब हम खुद अपनी अबिलिटीज को डाउट करने लगते हैं, जब हमें लगता है कि शायद हम जो है ना नहीं कर पाएंगे, तब कोई वो एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो हमारे सामने हमारी ही वकालत करता है, हमारे सामने हमें ही गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करता है, ताकि सही मायने में हम अपनी जिंदगी में सही साबित हो सके। अब वो जो शख्स है ना, ये कोई भी हो सकता है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई गुरु। यार अगर ऐसा कोई शख्स है ना, तो सच कहूं जिंदगी पूरी है यार। किसी भीड़ चाहिए, कोई एक हो जो तुम पे बेइंतहा भरोसा करे, तुमसे प्यार करे, सच मानो काफी है। एक छोटी सी शायरी है मेरे पापा की लिखी हुई, जो सुनाना चाहूंगी। मैं गिरने से डरा था, वो हौसला बनकर खड़ा रहा। जब मुझे खुद पर यकीन आ था, वो मुझ पर यकीन करता रहा। तो बस अगर लगे ना कि कुछ तो सही नहीं है, तो सही शख्स को ढूंढने में कहीं कोई कमी ना छोड़ना, और जब मिल जाए तो हमेशा उसे अपने करीब रखना। एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: Anji.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई. आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से ही मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे हैं भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: कौन कर रहा है आपने? यार मैंने कोई
2: एप्लीकेशन
1: ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका बात करने का
2: यार. तरीका आप,
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर. कोई
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है
1: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने अगर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा ये बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: पर देखो मजा तो तब आए ना जब इंसान को माहौल भी वैसा मिले।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. देखो यार फुटबॉल देखने का मजा तब और बढ़ जाता है जब मैच के साथ एटमॉस्फेयर भी वर्ल्ड कप वाला हो, है ना? और अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपके अंदर फीफा फीवर कूट कूट के भरा हुआ है तो इतना समझ जाएं, लुसेल का फैन जोन सिर्फ लाइव मैच स्क्रीनिंग तक लिमिटेड नहीं है। बल जहां पे एक तरफ जायंट स्क्रीन पर बिग मैच का एक्शन है, वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे लाइव एंटरटेनिंग गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, फूड स्टॉल्स हैं, फन फिल्ड इवेंट्स हैं जो आप किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। बल इतना ही कहना चाहूंगी, साल 2022 की यादों को एक बार फिर से अगर मिलकर कहीं जीना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है लुसेल फैन जोन। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की सबसे खास बात यह है कि आप कभी भी इसे अकेले बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते जब तक चार पांच लोग ना हो या चार पांच ग्रुप्स ना हो भैया जो आपकी टीम की अपोजिट टीम को सपोर्ट करें एंड कहीं ना कहीं आपको टीज करें, तभी तो असल कंपेटिटिव स्पिरिट जो है ना मैदान पे नहीं इस तरफ आता है। हमारे बीच क्या कहती पब्लिक, तो फटाफट से इस वक्त लुसेल फैन जोन जाने की तैयारी मैंने तो कर रखी है। आपका क्या प्लान है ये जरूर बताना। अगर आ रहे हो तो खाने पीने का थोड़ा सामान ज्यादा लेके आना, बाकी तो वहां से खरीद लेंगे आप, हम खाएंगे। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: cheek, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: बिल्कुल माँ सानू एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ 90s की नॉस्टैल्जिया में एक बार फिर से आपने और हमने एक साथ डाइव इन किया और साथ में ये गाना आपको सुनाया। चलिए ये गाना तो मैंने सुना दिया, लेकिन एक खास बात भी इस वक्त आप तक पहुंचा दी जाए।

Well, अगर इस वक्त बात करें हम अच्छे आइटम्स की तो इतना समझ जाइए कि जिंदगी में बाहर के तौर पर अगर कुछ आया हुआ है तो वो है हम्बा एग्जीबिशन। तो कहीं जाए या ना जाए इंडियन मैंगो फेस्टिवल को अगर आपको अटेंड करना है तो सीधा आपको पहुंचना है सुक वाकिफ स्टन स्क्वायर, जहां पे ढेर सारी आइटम्स जो है ना कर रहे हैं आपका इंतजार। चाहे पके आम की बात करूं, कच्चे आम की बात करूं, डेलिकेसीज की बात करूं, वैरायटीज की बात करूं, ये सारी चीजें वहां पे आपको चखने को टेस्ट करने को जरूर मिलेंगी। तो आपके वीकेंड का प्लान मैंने बहुत अच्छी तरह से बना ही दिया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेंसडे आ गया, मतलब वीकेंड मोड जो है हमारी लाइफ में 101% ऑन हो ही चुका है। फटाफट से जाएं आज के आज जाकर हम्बा एग्जीबिशन में इंडियन मैंगोस का जो कोहराम मचा हुआ है ना उसे अटेंड करके आए। मोहित चौहान की आवाज अंतरा मित्रा का साथ अगला गाना आपके रास्ते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: Well, चांद सी वाले तो आपकी जिंदगी में हम ले ही आए, लेकिन कुछ तो खास बात है जो आप तक पहुंचा भी दें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, एक बार फिर से जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस के तड़के के साथ ना मैं आ ही चुकी हूँ। यार इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ है जो हमारे लिए लाइंड अप है। अगर आप हाला समर इस कैंपेन की बात करें तो बस यही कहता है कि समर सीजन जो है इस वक्त आपको नानी के घर की याद 101% दिलाने वाला है। रीजन बस इतना है, जितनी सारी एक्टिविटीज लाइंड अप हैं आपका दिल करेगा कि भाई इन्हें अटेंड करें, जरूर करें। तो अगर आपको लगता है कि इस बार समर वेकेशन आप कतर में बिताने वाले हैं या दो महीने से एक महीने आप कतर में होने वाले हैं, इन दैट सिनेरियो ये बात तो तय है कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो आपके एंटरटेनमेंट का पूरा खजाना आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। उनमें से एक इवेंट की बात करूं जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से ही, यानी कि नेक्स्ट वीक से, तो उसका नाम है कतर टॉय फेस्टिवल। एक बार फिर से अपने बहुत ही बड़े एंड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये अगर हमारी जिंदगी में आएगा तो सीधा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। एंड इस बार के डिटेल्स को अगर आप नजर डालें, भाई साहब बच्चे बूढ़े और जवान हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो अगर आपका दिल कहता है दिल तो बच्चा है जी, तो हाँ जी यहाँ पे जो है आप जरूर पहुंचना, बिल्कुल टेंशन मत लो, मजे जो है भरपूर करेंगे। टिकट्स हमारी आप करेंगे, परचेज, एंटरटेनमेंट हम आपका करेंगे। अरिजीत सिंह की आवाज, मुश्तबा अजीज नजा का साथ, एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके रास्ते, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु
2: तुझे

0: హలో మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: అరే అరే మామూ, మిర్చి హెల్ప్ లైన్ బతా, సవాల్ క్యా హై?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी नहीं.
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: वो लकी अली की खूबसूरत सी आवाज और इसे कहते हैं गर्मी में ठंडी का एहसास।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Yes, सच कहूँ कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो genuinely अगर किसी बात का पर्याय होती हैं यानी कि synonym होती हैं तो वो है सुकून, वो है राहत. एंड यार लकी अली उनमें से एक ऐसे गायक हैं जिनकी आवाज़ क्या melodious आवाज़ है यार, क्या कमाल का जादू. मतलब मुझे बहुत भी अच्छी तरह से याद है कि जब लकी अली इससे रब्ता हुआ था, एज एन जब नया मैंने उनका गाना सुनना शुरू किया था या उन्हें मैंने सुर फिल्म में देखा था, भाई मैं ना इनकी फ़ैन हो गई थी बिग टाइम. और खासकर इनकी आँखों की, क्या आँखें यार. और ना इस बंदे को देखकर आपको एक अलग सी ऑथेंटिसिटी फील होती है, लगता है कि यार कुछ तो ओरिजिनलिटी जो इस बंदे की लाजमी है शायद किसी और में ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. हैविंग सेड दैट, राहत जो है इस चिलचिलाती तड़कती भड़कती और हमको भड़काती गर्मी में लकी अली की आवाज़ ने ज़रूर दिया. लेकिन अगर इस वक्त ज़रा बाहर तशरीफ़ उठाकर कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना बता दूं कि आज के मौसम का हाल है तो क्या ही है.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. हाँ जी, आपका नाम तो जानते हैं, साथ ही आपका काम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं. वैसे आज का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा समवेयर अराउंड 46. जरा संभल के रहें, अपने आप को खूब ज्यादा सेफ रखें. बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गर्मी से आकर एग्जैक्टली तुरंत ठंडा पानी ना पिएं, या तो फिर एकदम ठंड से इमिजिएटली गर्मी में जाने की कोशिश ना करें. ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो, लाइफ में यही उसूल मेंटेन होना चाहिए. वैसे मिनिमम टेम्परेचर की बात करें सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 35. कीप योरसेल्फ फुली हाइड्रेटेड. बाकी दिमाग इन कलेजे की ठंडक के लिए एक काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु. मीनवाइल वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वेदर चेक, ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vyet bala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: बेटा, घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आजा, नहीं आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो
3: बेटा।
2: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चलाई गलो बेटे। क्या हो गया हमारा?
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
2: अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटा नहीं आते, ये नाराजगी होती है तो ऐसे खाल छोड़ कर जाते हैं।
2: जी माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटा। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: बेटा घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल बात कर, अगर
3: आप तू आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया?
3: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
6: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
5: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
5: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

लुलुतना रैन अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। क्या खूबसूरत प्यारा सा गाना है यार। इस वक्त ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक प्यारी सी बात भी आप तक पहुंचाने की तैयारी मैं कर ही लूं। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. ज़िंदगी में मिठास है, साथ ही स्पाइस का तड़का है। जरा बताएं, इससे ज्यादा किसी इंसान को चाहिए तो फिर क्या ही चाहिए। वैसे इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो भाई बहुत कुछ एक्साइटिंग है जो हो रहा है, जिसके बारे में आपको जाना है ना, आपका दिल करेगा भैया ये जो है ना मुझे 101% चाहिए। वेल, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स, जो कि शुरू होंगी 5th of July को एंड ये चलेंगी 3rd of August तक। अब ये जो समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, दे आर गोना बी केटरिंग टू स्टूडेंट्स एजेड 6 years अंटिल 18 years। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कतरी स्टूडेंट्स हो जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं या स्टूडेंट्स विद स्पेशल एबिलिटीज, ये सभी बच्चों के लिए ये खासकर एक्टिविटीज जो है प्लान की गई हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ये एक्टिविटीज होस्ट की जाएंगी। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानना है या ये इंश्योर करना है कि आपके बच्चे भी इस इवेंट का हिस्सा बन सकें, या क्या कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम भी इसका पार्ट बन सकें, तो बिल्कुल आप qatar_edu ये पेज है उनका इंस्टाग्राम में, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पेज की वेबसाइट पे आप खोलिए, सारी की सारी डिटेल्स जो है वहां पर आपको मिल ही जाएंगी। बढ़िया है जी, ये तो बात हुई समर एक्टिविटीज की। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं कतर में जो समर कैंप्स होस्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। सो कुल मिलाकर जो ये टेंशन रहता है ना कि भैया बच्चों की छुट्टियां शुरू हुई तो माँ बाप की छुट्टियां खत्म होने वाली है ना, ये सिलसिला इस बार नहीं होगा। बहुत कुछ एक्साइटिंग लाइनअप है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है व्यस्त रहेंगे ना, आपका सिलसिला भी आओ बहन चुगली करें, आई मीन वो किटी पार्टी वाला यही तो होता है जिससे। सुनो निगम की आवाज़ श्रेया घोषाल का साथ, अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

मुझे सरिया की खूबसूरती आवाज प्रिया सरिया का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म शुद्ध देसी रोमांस। वैसे अगर शुद्ध देसी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो भाई दिल जो है ना खुशी से गदगद हो उठा है। मिर्ची अंशु। देखो वैसे जब खुशी की बात हो तो खुश हो लेना चाहिए, एंड अगर खुशी की बात ना हो ना तो भी जिंदगी में हमेशा खुशी रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है आने वाले दिनों में एक बार फिर से खुशी की बात जो है वो आई जाएगी। लेकिन हाँ, अभी अगर आपकी और मेरी खुशी की बात करूँ तो जिंदगी में ये वाला आलम जो है बहुत जल्दी सजने वाला है, क्योंकि अच्छे वाले दिन यानी कि सैलरी वाले दिन जो है ना हमारी जिंदगी में धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। इसके साथ ही जैसे ही जून का महीना जाएगा भैया हम आधे साल को भी अलविदा कहेंगे, यानी कि साल 2026 आधा जो है वो पूरा भी हो जाएगा। भाई क्या बात है। Having said that, जरा देखें आज का पैसा क्या ही बोलता है। मतलब अगर आपसे ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.97, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.72, बांग्लादेशी टाका 33.83, लंकन रुपीज 91.99। क्या बात है यार, एक बार फिर से छलांग लगाते हुए, एंड साथ ही नेपाली रुपीज 41.49। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. ज़बान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था. क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.

0: Well, Surani Kam Ki Awaaz, Mahalakshmi Air Ka Saadhan. What a lovely track it is. What a power-packed track it is. What could be a better way?
1: कि भैया मैं अपनी भूख को आवाज़ दूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में अगर कुछ चलता है तो वह धमाकेदार म्यूजिक या तो फिर डांस. दिस इज द ट्रूथ.
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु.
0: हेलो, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. यार पता है क्या, मुझे ना बचपन से एक बात सिखाई गई है कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक पैशन होना ज़रूरी है. मतलब आपका इंटरेस्ट, आपका झुकाव, आपका रुझान किसी एक चीज़ की तरफ. देखो यार, हम जो काम करते हैं ना, वो हमारा प्रोफेशन होता है. हम जो घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी रूटीन का एक पार्ट होता है. लेकिन इन सब के अलावा ऐसी कोई एक एक्टिविटी हो जो बिल्कुल आपके लिए हो, जो आप तब करना चाहें जब आपका दिल चाहे कि आपको कुछ सुकून चाहिए, आपको राहत चाहिए. एंड अगर आपने अपनी ऐसी कोई हॉबी या अपना पैशन फिगर आउट कर लिया, तो समझ जाएं आपसे ज़्यादा लकी इंसान दूसरा कोई है ही नहीं. मैंने कतर में देखा है कई लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है. मतलब इवनिंग्स का उनका जो रिचुअल है, उनकी रूटीन है, ये मैंडेट क्राइटेरिया है भाई. ये कुछ करें ना करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने ज़रूर निकलेंगे. कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई पैडल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है. कईयों को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कईयों को आर्ट में इंटरेस्ट है. लेकिन सच कहूँ, मेरी कहानी काफ़ी अलग है यार. मेरी ज़िंदगी में मेरा पैशन जो है ना, वो पूरी तरह से मेरे प्रोफेशन से मर्ज हुआ है. मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है. एक बात बताएं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन एंड पैशन जो है ना, वो मर्ज होता है. उनमें से एक मैं ज़रूर हूँ. हैविंग सेड दैट, उसके अलावा हाँ, मुझे नाचने का बहुत शौक है. इनफैक्ट मैंने क्लासिकल डांस फॉर्म कथक में पूरे 6 साल का कोर्स किया एंटिल विद अंतिम, एंड हर बार मुझे ऑनर्स मिला. झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बोल रही. अरिजीत सिंह की आवाज़ एंड टू ऑल द लवली पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी एट द मोमेंट. ये अगला गाना आपकी और मेरी दोस्ती के नाम. मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ. मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: लोग खुश होने के रीजंस ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हम पांच की स्वीटी को देखा है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि यार लोगों को ना खुश होने की वजह चाहिए होती है, और ये स्टेट ऑफ माइंड में ना 95% जनता रहती होगी। बट बॉस, लाइफ का सच तो मुझे यही लगता है कि खुशी चीजों से या सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये सब तो कभी कभी आते जाते खुशी दे जाते हैं, बट रोज की खुशी के लिए तो हम ही जिम्मेदार है ना। हैप्पीनेस इज एन आर्ट, और हम पांच की स्वीटी इस आर्ट को बड़ी खूबसूरती से जिंदगी में उतारती थी यार। बंदी ना बिना बात के खुश रहती थी, डोर बेल बजती तो उछलते कूदते गाना गाते हुए दरवाजा खोलने चली जाती। बात क्लियर है बॉस, खुशी के लिए ना दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो डिपेंडेंट ही रह जाएंगे, लेकिन खुद की खुशी का रीजन खुद को बनाएंगे तभी तो खुशी पाएंगे। क्या बोलते हो? और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि एक बार स्वीटी की परफॉर्मेंस देख ही लो हम पांच में, क्या पता आपको अपने आप को खुश करने का कोई आइडिया ही मिल जाए। चलो जी, फिलहाल के लिए मैं आपको खुश कर देती हूँ मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल के, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: Aló. Aló.
3: Ama bhai, tum.
2: अब
3: मुझे अब पता चला
2: भाई कौन बोल रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भाई।
3: अब मुझे मुझे अब बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम है। मेरी
2: भाई नहीं आ रही भाई।
3: मुझे अब बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे तुझे मुझसे कह रहा
2: बता तो दे
3: भाई।
2: अबे ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है।
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: भाई कौन लताशा।
3: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया।
2: अबे भाई कौन लताशा। मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था।
2: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई। तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था। मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था। बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा। मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा।
3: अबे तो
2: सुनने का मौका नहीं दिया। मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा। रॉन्ग नंबर लग गया। ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या। पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा।
2: फोन तूने करा। तूने
3: मैंने क्या फोन मैंने क्या। तो तेरे हाथ में तो था। तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तो तू बोल कैसे रहा भाई।
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया। मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
2: तो भाई ये बात पहले बता देते यार। इतना तुमने हंसवा दिया टेंशन अलग दे दिया एंड में
1: आके कुकड़ू कू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज भी मुझे याद है मैंने मोहब्बतें कैसे देखी थी। नहीं नहीं, ना वीसीआर पे देखी ना थिएटर में देखी, केबल टीवी पर रात में 12 बजे के बाद नई नई पिक्चरें लगाया करता था हमारा केबल वाला, बस वही छिपते छिपाते देखी।
0: मिर्ची वीसीआर।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बस यार, ये फिल्म देखने के बाद मैं मंत्रमुग्ध हो गई। एक तो यार शाहरुख खान इन द फिल्म, ऊपर से अमिताभ बच्चन के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन शाहरुख खान देखने को मिले थे, और फिर कास्ट भी इतनी लंबी चौड़ी थी जिसमें से एक जिमी शेरगिल वॉज माई पर्सनल फेवरेट। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर शाहरुख खान की झलक तो थी, तो बिकॉज ऑफ शाहरुख खान आई यूज्ड टू लाइक जिमी शेरगिल एज वेल। बट ये तो हुई मेरी बात, बाकी सबकी इस फिल्म को करने की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म बहुत शौक में नहीं करी थी, या इसकी स्क्रिप्ट अमिताभ

अब बच्चन के पास चल के नहीं गई थी। एक्चुअली एट दैट टाइम वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और उन्होंने बहुत बड़े सेटबैक्स और फाइनेंशियल लॉसेस देखे थे, जिसके चलते ही हैड नो आइडिया व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन एट दैट टाइम। और अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर अंदर से एक आवाज आई कि यू आर एन एक्टर, गो बैक टू एक्टिंग, एंड दैट इज वॉट ही डिड। वो सीधे गए यश जी के पास और उन्होंने यश जी को बताया कि आई एम आउट ऑफ जॉब एंड आई नीड समथिंग, आई नीड टू वर्क एंड आई नीड टू अर्न मनी, एंड दैट इज हाउ मोहब्बतें हैपन टू हिम। हालांकि मोहब्बतें की स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा ने DDLJ के पहले ही लिख दी थी, हाँ, लेकिन जब अमित जी की एंट्री इस फिल्म में हुई तो आदित्य ने अमित जी के हिसाब से उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से रीराइट किया, मोल्ड किया, ताकि वो अमित जी के ऊपर सूट करे और अमित जी के कैरेक्टर को बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट भी बनाया इसी के साथ साथ। एंड मोहब्बतें रिलीज होने के बाद ये कह सकते थे कि अमित जी ने कमबैक कर लिया था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: We usually think कि actors को movie मिलने में क्या ही दिक्कत होती होगी या directors को अपने lead actors मिलने में क्या ही दिक्कत होती होगी, नजर घुमाते होंगे और कोई ना कोई उन्हें मिल जाता होगा. But ऐसा हमें लगता है, सच्चाई कुछ और ही है.
0: Mirchi Chat Room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड मोहब्बतें जब बन रही थी तो इसकी कास्ट को कास्ट करना अपने आप में एक टास्क हो गया था. आपको पता है, अमित जी के ऑपोजिट इनिशियली दे वांटेड श्रीदेवी और ऑफर भी कर दिया गया था उनको ये रोल, लेकिन श्री जी ने इस चीज के लिए मना कर दिया. उसके बाद स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े एंड हर कैरेक्टर हैड टू बी रिटन ऑफ. फिर इन लोगों ने एक और कैरेक्टर के बारे में सोचा हुआ था, एंड दैट वाज मिथुन चक्रवर्ती, जो कि शिफाली शाह के आर्मी हस्बैंड का रोल प्ले करने वाले थे. लेकिन फिल्म की लेंथ इतनी लंबी हो रही थी कि फिर इस कैरेक्टर को भी इन लोगों ने हटा दिया. ऑल्सो देयर वाज अ टाइम जब यश जी प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म में कास्ट करना चाह रहे थे शमिता शेट्टी वाले रोल के लिए, लेकिन क्योंकि प्रियंका वाज स्टिल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट, वो ये फिल्म नहीं कर पाई. किम शर्मा का रोल करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था और प्रीति झांगियानी वाला रोल समीरा रेड्डी को ऑफर किया था. यहाँ तक कि मूवी के लिए द फर्स्ट चॉइस फॉर द मेन फीमेल लीड, दैट इज ऐश्वर्या राय, वाज नॉट रियली ऐश्वर्या राय, दैट वाज आल्सो रानी मुखर्जी. इतने सारे चेंजेस के बाद फाइनली द फिल्म वॉज मेड. बट वही वाली बात है यार, कि कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, मोहब्बतें अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेती है. जैसे कहा गया है कि दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते. मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: The feeling
5: is immense. I cannot tell you in words कैसा फील हो रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
0: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उफ, ये रूमर्स भी ना, इन्हीं रूमर्स के चक्कर में तबू को फिल्म मेजर साहब में कास्ट करते करते रह गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, जब मूवी बनने वाली थी तो फिल्म मेकर्स तबू को फीमेल लीड में लेना चाहते थे, लेकिन लेकिन लेकिन उस वक्त ये रूमर्स थे कि तबू इज अबाउट टू गेट मैरिड, जिस वजह से फिल्म मेकर्स डिसाइडेड टू नॉट कास्ट हर एंड टुक सोनाली बेंद्रे फॉर द रोल इंस्टेड। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि रूमर्स पर यकीन करने के बजाय सीधा तबू से ही कंफर्म क्यों नहीं कर लिया इन लोगों ने। हाँ, तब सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे ना, शायद इसी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा, है ना। एनीवेज, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकलते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा, तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ पाइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या कार्डियोलॉजिस्ट्स दिल पर बने हुए गानों को सीरियसली लेते होंगे या फिर फिलोसफिकली लेते होंगे, किस तरीके से लेते होंगे, क्योंकि आई एम श्योर इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट टू लिसन टू अ पेशेंट टेलिंग हिम कि दिल है छोटा सा. दैट क्लियरली मीन्स कि आपके दिल का साइज नॉर्मल नहीं है एंड यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर अ टेस्ट. जस्ट किडिंग यार. आई होप कार्डियोलॉजिस्ट दिल के रिलेटेड गाने जो है उनमें प्रैक्टिकलिटी ना लाते हुए उन्हें फिलोसफिकली इंजॉय कर पाते होंगे. अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हो ना तो मुझे डीएम करके जरूर बताना. हाँ, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा.
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान. एंड मूविंग ऑन टू आज की वो दो धुनें जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके मिक्स करके रखी हुई हैं, और आपने पहचानना होगा कि ये दो धुनें एक्चुअली कौन से गानों की हैं. हियर वी गो.

ओके डोकी, अब आपने सुनी लिया होगा तो बस अब डीएम कर दो अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेजो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हेरा फेरी फिल्म बड़ी दमदार और मजेदार थी यार, लेकिन इसका एक गाना है उसके अंदर भी हेरा फेरी हुई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया एक गाना था, वो कौन सा है? ये वाला। अच्छा गाना था यार, इसका म्यूजिक काफी डिफरेंट था। नहीं, वेल डिफरेंट इसलिए भी था क्योंकि ये म्यूजिक कहीं से उठाया गया था। वेल बेसिकली इस गाने की म्यूजिक इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम रिटर्न ऑफ द मैक करके एक म्यूजिक वीडियो है, और इस म्यूजिक वीडियो के सिंगर हैं मार्क मॉरिसन, विच इज एन इंग्लिश सॉन्ग विच गोज दिस वे। And no points for guessing कि ये गाना किसका कंपोज किया गया। Of course, अन्नू जी। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है what was I searching for a while ago? Postcards.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And यार, being a 90s kid, I realized कि boss, जो मजा postcards में message लिखकर भेजने में था ना, वो WhatsApp messages में नहीं है. And you know what have I decided? मैंने decide किया है to start an old trend this year of sending postcards and birthday cards to friends and family. Because जो मजा post में है ना, वो मजा technology में नहीं है. कमाल की बात तो ये है कि मेरी पोस्ट यानी पोस्टकार्ड्स पोस्ट से ही आएंगे, because I have ordered them online. और एक बात और, if you want a postcard from me, तो मुझे मेरे Instagram handle जो कि है मिर्ची सारा, उस पर DM करो और लिखो कि Hi Sara, waiting for your chitthi. First 5 messages को I will be sending a handwritten postcard. चलो ना यार, ये पुराना वाला ट्रेंड फिर से शुरू करते हैं, मजा आएगा. Waiting for your text, और अभी के लिए you stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची. It's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: हाँ जी.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: जी, फिर?
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
2: हेलो.
3: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है. कोई आप गलत मिला है.
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहा है भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: क्या तरीका है?
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार. आप एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: बात करो, एक तरीका है बात करने का
3: यार. तरीका आप, ओ बच्चे चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठा.
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता है,
2: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा से जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: करो यार,
2: अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा से जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया.
2: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई, कुकड़ों को.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Goldspot,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार आज कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लो, बट नो वन मैचेस योर वाइब। तुम सिर्फ गोल्ड स्पॉट नहीं, गोल्ड की पूरी ब्रेक थी। तुम्हारा असर हमारी यादों पर इतना भारी रहा है। अक्सर जब कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है ना, तो बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र निकल ही जाता है कि यार कहीं से कोई गोल्ड स्पॉट ला दे तो मजा आ जाए। आई रिमेम्बर बचपन में हमारे घर में काम करने वाले यूसुफ भाई ना, हम बच्चों को खुश करने के लिए हमें गोल्ड स्पॉट पिलाया करते थे। कांच की कर्वेशियस तुम्हारी बोतल विद अ टिन का ढक्कन, उफ तुम वाकई चीज बड़ी थी मस्त मस्त। आज भी अगर कोई डार्क ऑरेंज कपड़े पहनकर आता है ना, तो उसका नाम उस दिन गोल्ड स्पॉट ही रखा जाता है। वैसे नाम बड़ा सही था यार तुम्हारा, गोल्ड स्पॉट। बट आई वंडर यही नाम क्यों? एंड वेल, शायद कुछ बातें मिस्ट्री रह जाती हैं। अगर तुम आज भी होती तो कहीं किसी न्यूज आर्टिकल में मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाता। इस गर्मी में तुम्हारी ठंडक को याद करती तुम्हारी सारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। और वैसे गोल्ड स्पॉट पीने के बाद जो दिल का हाल हुआ करता था ना, वो इस गाने के जरिए अब आपसे बयान किया जाएगा। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती कहीं कुछ मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
8: खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट।
12: यहाँ की लड़की

अली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन
1: हमारा,
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इस गाने में सवाल है, लेकिन सवाल इश्क पर है, और मैं तो कहती हूँ कि इश्क अपने आप में ही एक सवाल है, और जिसने ये सवाल समझ लिया ना, अगला काम उसका ये हो जाता है कि समझना उसे ये बवाल है। उदित नारायण विभा शर्मा की आवाज में इश्क मूवी से दिस गाना, इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: इश्क हुआ, कैसे हुआ? अच्छा हुआ, जैसे हुआ। और प्यार चीज ही ऐसी है यार, वाकई में। मतलब इश्क जो है ये एक सवाल बनकर ही रह जाता है। आपको पता ही नहीं लगता यार कि कब आपको मोहब्बत हो जाती है। वो तो बहुत टाइम बाद आपके दोस्त आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये सारे जो तुम्हारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना, ये मोहब्बत के हैं। लेकिन इंसान भी ना बड़ी कमाल चीज है, वो जब मोहब्बत में होता है ना तो वो उसे नकार रहा होता है। कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं किया था ना कि हम प्यार में पड़ना है, या हम प्यार में पड़ेंगे, या हम प्यार में पड़ने वाले हैं। लेकिन प्यार चीज ही ऐसी है यार, बिना बताए दबे पाऊं कब आपकी जिंदगी में एंट्री ले लेता है ना, आपको भी नहीं पता लगता। वही वाली बात है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि आसपास के लोग आपको बता रहे होते हैं कि तुम्हें तो प्यार हो गया है, सिम्टम्स वही है कि रातों को नींद नहीं आ रही है, गालों का कलर जो है वो रेड हो रहा है, वो इंसान आसपास कहीं नजर आता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, शर्म आने लग गई है तुम्हें आजकल, सब कुछ ठीक तो है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। अगर आपको भी यही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना अपने अंदर, तो समझ जाइए कि आपको लवेरिया हो चुका है। इसी के साथ यही गाना लगाते हुए अब आपसे कहती हूँ, हम हराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझसे मिल लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: वैसे फिलहाल हमारा बंधु हमारा सखा हमारी गाड़ी का एसी ही है। मस्त मौला गौरव। मिर्ची घड़ी में दोपहर के 4:04 हो रहे हैं। आजकल हमारे कतर में ना सुबह होती नहीं है सर, सीधे दोपहर ही होती है और शाम तक दोपहर ही रहती है। 4:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम में से ज्यादातर लोग जिनके अंदर पंचायत की आदत है वो पूछ रहे हैं, अरे यार किस होटल में मारपीट हो गई, कौन 25 लोग गिरफ्तार हो गए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, कतर ये प्रेम का देश है, यहाँ प्रेम करो, एक दूसरे से अगर मारपीट करोगे तो कार्रवाई होगी। और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की ऐसी कार्रवाई आज हुई है, 25 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा। एंड जितना हो सके मैच का एग्रेशन टीवी तक खत्म रख दो, उसको अपनी असल जिंदगी में लाओ, क्योंकि टीमें जीतती हैं, उन खिलाड़ियों को सब कुछ मिलता है, आपको सिर्फ सुकून मिलता है, लेकिन उस चक्कर में अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो यार बातें खराब ही होंगी। इस उम्मीद में कि आप मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और प्यार ही फैलाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज की बड़ी कमी है, वो है प्यार। तो उसको फैलाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। एंड मस्त मौला गौरव के साथ अगले 4 प्यार के लिए तैयार हो जाइए। हबीबी मिर्ची हॉट है,
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Murga, murga. La vieta la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गामा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: Love is my biggest fear because for me love is death.
3: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
3: Catch Officer Brown. Officer Brown tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: मर्डर गश्ती नहीं, फ्रॉड गश्ती चल रही हमारे आपके फोन पर। अरे भैया, ऐसी ऐसी फेक कॉल्स, ऐसी ऐसी कॉल्स, हम फलानी मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं। जल्दी अपना पता का आईडी नंबर बताइए, अपना कतर आईडी नंबर बताइए, और हम टेंशन में आके फटाफट से बता देते हैं। लेकिन नहीं बताना है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने तो अब आपको आगाह भी किया है।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने वार्निंग इशू की है कि अगर कोई आपसे कहे कि पर्सनल अकाउंट में पैसे भेजो, तुम्हारा काम फटाफट से हम लेबर कोर्ट में करा देंगे, और किसी भी तरह की कोई सर्विस के लिए आपको झांसा दे रहा है तो इसमें बिल्कुल भी मत फंसिए। मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि उनकी सारी पेमेंट्स और फीस उनके ऑफिशियल चैनल, उनके ऑफिशियल हैंडल पर आती है, और साथ ही साथ moi.gov.qa पर ही आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। और किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट या लिंक को क्लिक करके किसी तरह के पेमेंट को करने की जरूरत नहीं है, आपको यह बहुत बार ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अपना बैंक का ओटीपी किसी को कभी नहीं बताना है, बैंक का डेटा, वेरिफिकेशन कोड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे सामने वाला कितना भी अर्जेंट माहौल बना के आपके सामने एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से बात कराए, यला ताल जीप जल्दी बताओ। आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये स्कैमर्स हैं, इनसे आपको अलर्ट रहना है, स्टे अलर्ट से सेफ, क्योंकि आप कतर में हैं और कतर चाहता है कि अगर ऐसा कभी कोई कॉल आपके पास आता है तुरंत पहले तो फ्रॉड कॉल को काटिए, और फोन काटते ही आप हॉटलाइन नंबर 16505 पर रिपोर्ट करिए। आई रिपीट, 16505 ये वो नंबर है जिस पर आप इस तरह के फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। 16505 16505। एंड मस्ट मौला गौरव इतना ही कहेगा कि बहुत सारे सीधे साधे लोग होते हैं इस दुनिया में, उनको ये स्कैम कॉलर्स अपने में फंसाने की कोशिश करते हैं, पर अब हम सबको होशियार बनना है, और ऐसे लोगों को सही करने का तरीका यही है, इनकी फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्ट करो 16505 पर। एंड मस्ट मौला गौरव के साथ रहोगे तो ऐसे ही फायदे की बातें पता लगती रहेंगी, और अब आपका पैसा खोने में कोई जमाना नहीं लगेगा, आप खुद ब खुद सब बचा के चलोगे। आगे मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मौसम का तो फिर कुछ करो सूरज चाचू।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: मस्त बोला गौरव आपके साथ। देवी और सजनों, अब हमारे कतर में रात के बाद सीधे दोपहर हो रही है, अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा। 44 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम तापमान पहुंचा और मिनिमम अराउंड 29 आएगा। बट बड़ी बात यह है कि ह्यूमिडिटी हम सबको परेशान करना शुरू कर चुकी है। अगर हम बात करें तो हवाओं की रफ्तार आज 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास चल रही है। वहीं हमारे कतर में जबरदस्त ह्यूमिडिटी आने वाले टाइम में होती जा रही है, 28% राइट नाउ, बट आई एम वेरी श्योर बाय इवनिंग इट विल बी मच मोर। तो बस ध्यान रखे रहिए बॉडी का, अपने आप को हाइड्रेट रखे रहिए, पानी पीते रहिए, और जैसे लस्सी पीजिए, कुछ अच्छा ठंडा पीने का मन करे जूस पीजिए, एंड एसी के कोने में हवा बैठ के खाते रहिए और मिर्ची सुनते रहिए। यही एंटरटेनमेंट का असली डोज है। इट्स हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। For bright future, call now 310-0813.

0: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
1: Hi.
2: How are you feeling right now?
1: The Josh is high. I am excited a lot.
2: How's the feeling?
1: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: Mitchy helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख, रख.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਲੜਾਵਾਂ ਔਰ ਕੌਨ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਬਤਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਾ ਪਾਠ ਪੜਾਤਾ ਹੈ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮ 5:04 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ ਟਾਈਮ
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Chali ji, Devi aur Sajno, bari aa gayi hai ki main aapke samne ek acha sa wo game khelu jise kehte hain.
2: Pehchan kaun?
0: Pehchan kaun mein aati hai ek awaaz, aapko pehchani hoti hai ki ye kis hero ki hai janab, zara dhyan se suniye.
3: Nok jok to nahi, lekin compromise to zarur hua.
4: Kyun?
3: Matlab main garmi mein nahi. सोना पसंद
4: एंड शी लाइक्स अ लिटिल
3: वार्मर तो 19 डिग्रीज पे कॉम्प्रोमाइज किया है
0: 19 डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज किया है गर्मी में उनको बिल्कुल सोना पसंद नहीं है एक बार फिर ध्यान से सुनिए बताइए कौन से एक्टर हैं ये
3: नोक जोक तो नहीं लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो जरूर हुआ
4: क्यों
3: मतलब मैं गर्मी में नहीं सोना पसंद
4: एंड शी लाइक्स अ लिटिल
3: वार्मर तो 19 डिग्रीज पे कॉम्प्रोमाइज किया है
0: 19 डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है इनके घर में आप कितने डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं बाद में पूछेंगे लेकिन फिलहाल के लिए सवाल यह है कि ये कौन है जिन्होंने आपके सामने अपना ये पूरा घर का कांड बाहर निकाला है फिर से ध्यान से सुनिए
3: नोक जोक तो नहीं लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो जरूर हुआ है
4: क्यों
3: मतलब मैं गर्मी में नहीं सोना पसंद
4: एंड शी लाइक्स अ लिटिल
3: वार्मर तो 19 डिग्रीज पे कॉम्प्रोमाइज किया है
0: 5000185000186 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है आपके जवाबों का वॉइस नोट में हाँ जी लिख के आना शुरू हो गया है गौरव भाई ये है गौरव भाई द आंसर इज दिस लेकिन मैं कहता हूँ वॉइस नोट में भेजेंगे तो पूरा कतर आपके जवाब को सुनेगा इसी बहाने रेडियो पर आपकी आवाज आ जाएगी हमको भी थोड़ा कम बोलना पड़ेगा आपकी आवाज से हम भी काम चला लेंगे एंड लोगों तक आपका आंसर पहुंचा देंगे 5000186 पर जितनी जल्दी हो सके अपना भेजिए आंसर मिर्ची थॉट सुनीति अरिजीत मिलके गा

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Gambala. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे।
0: ऊँ चाहिए।
1: ओ,
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot।
3: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
3: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
3: Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: हाँ जी डेस्पेरेडो गाना सुना दिया किसने भाइयों?
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है, तो देवी और सज्जनों फिगर नॉट हम लेकर आते हैं इस घंटे में जिसे कहते हैं
2: पहचान कौन।
0: पहचान कौन में आज का आवाज कुछ यूं है।
3: नोक जोक तो नहीं लेके कॉम्प्रोमाइज तो जरूर आ
4: रहा। क्यों?
3: मतलब मैं गर्मी में नहीं सोना पसंद।
4: And she likes a little
3: वार्मर। हाँ। तो 19 डिग्रीज पे कॉम्प्रोमाइज किया।
0: क्या बात है, 19 डिग्री पर कॉम्प्रोमाइज हुआ और हमने पूछा ये एक्टर कौन है।
5: हाय गौरव, दिस इज आफरीन, हाउ आर यू? इसका आंसर है सैफ अली खान। आवाज सैफ अली खान।
6: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
0: ओ
6: वेल, वो आवाज है सैफ अली खान की। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।
7: दिस इज सैफ अली खान एंड अर्चना पूरन सिंह।
8: गुड इवनिंग गौरव, मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। अभी आपने जो सवाल किया था, वो एक्टर का नाम जो है ना सैफ अली खान है और मैं बहुत बड़ा बिग फैन हूँ मिर्ची का, जो अच्छी तरह से गाने सुनाते हैं और अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैं आपका फैन हूँ, साथ ही साथ है कि आपके इंटर टीम का भी बिग फैन हूँ। थैंक यू
9: गौरव भाई। कैसे हैं आप?
0: बढ़िया।
9: मैं श्याम बोल रहा हूँ।

0: वॉइस आप सुनाया
1: ओके सैफ अली खान है। मोहम्मद भाई का भी कहना है, शर्जील भाई का कि ये सैफ अली खान है, कुछ ऐसा ही कहना है। राहुल भाई का जिन्होंने कहा है सैफ अली खान, एंड सामने आए हैं यस धीरेन जी जिन्होंने कहा है सैफ अली खान। इसके अलावा एक वरुण है जिन्होंने लिखा है सैफ अली खान, थैंक यू सो मच। आयुष जिन्होंने लिखा है सैफ अली खान, एंड ये है हुसैब भाई जिन्होंने लिखा है सैफ अली खान। इसके अलावा थैंक यू सो मच आमिर भाई सैफ अली खान। यार मतलब सैफ अली खान के इतने जबरदस्त फैन की इतनी आवाज है, पहचान ले रहे हैं, क्या बात है भाई। यस इट इज सैफ अली खान। एंड इतना ही कहूंगा आपको, कॉकटेल 2 में लोगों ने मिस किया लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
5: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension। तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ पाइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरे दिल में कोई मुश्किल हो तो दिमाग से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे फिलहाल इस वीकेंड की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। कोई कह रहा है नहीं ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ के हम्बा एग्जीबिशन में जाएंगे, कोई कह रहा है 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में जाएंगे जहां पर बहुत कुछ चल रहा है। इन सब के बीच 26th and 27th of June 3-2-1 कतर ओलंपिक म्यूजियम में शाम 4 से 6 भी एक फैमिली फ्रेंडली वर्कशॉप हो रही है जो स्पोर्ट्स म्यूजियम में बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। और तो और ऊद एंड परफ्यूम एग्जीबिशन भी हमारे कतर में अल हज़्म मॉल में लगने जा रहा है, वो 25 जून यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। इतना सब कुछ समर में भी हमारे कतर में है कि माहौल बना हुआ है, लेकिन सूक वॉकिंग फॉर हम्बा एग्जीबिशन का मजा अपने आप में एक अलग ही फीलिंग लेकर आता है। और अगर हमारे हम्बा एग्जीबिशन की विजिट को देखना है तो मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाओ। क्या धमाल किया हम लोगों ने अपने मिर्ची के लिसनर अली वजदार बॉलीवुड के नंबर वन फैन के साथ, बहुत सारा मस्ती धमाल किया है, वो देखना है तो मिर्ची वन कतर का इंस्टाग्राम हैंडल देख लो, समझ जाओगे क्या खाया हमने, क्या मौज की। और हम्बा एग्जीबिशन में जो कि 3rd edition है इंडियन एम्बेसी द्वारा आयोजित किया जाता है, वो कैसा रहा ये सब कुछ आपको पता लगेगा। जाइए पहले वीडियो देखिए फिर बताइएगा गौरव मजा आ गया मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
1: Hi.
2: How are you feeling right now?
1: The Josh is high. I am excited a lot.
2: The feeling
1: is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे. मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: जी मलहारी गाना खत्म हुआ विशाल डडलानी की आवाज में, और आपके साथ कौन आ गया मन लगाने वाला?
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन मैं 15 तारीख के बाद मन लगा नहीं पाता हूँ स्पेशली खर्ची वाली चीजों में, क्योंकि मेरी जेब की खर्ची खत्म हो जाती है। सैलरी की बात कर रहा हूँ जो अब 4-5 दिन में आ ही जाती है। अगर आपके पास है तो भेजो, रेट्स अच्छे है। आई पे ऐप पर इस वक्त आपको मिल रहा है 1 कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 25.98, मतलब कुल मिला के 26 रुपए के लगभग मिल रहे हैं, 2 पैसे कम कर दो तो। इसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज के अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 92 श्रीलंकन रुपीज, वहीं पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब 1 कतरी रियाल के बदले 76.72 पाकिस्तानी रुपीज। तपाईँको नेपाली रुपीज का रेट छ दाजु 41.45 का भल छ रेट दाई, हाँ जी 41.45 का रेट दाजु। अगर घर भेजना तो राइट टाइम छ बहनी। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेश टका की बात करें दादा 1 कतरी रियाल के बदले 33.83 तो 33.83 बांग्लादेशी टका का रेट आशे। तो मस्त मौला गौरव के साथ एंटरटेनमेंट चल रहा है, सुनते रहिए मिर्ची शाम शानदार, इट्स हॉट।

0: mye til helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: चुनरी चुनरी गाना खत्म हो गया और आपके साथ आ गया
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन मेरे साथ खेल खिलवाड़ खत्म नहीं होता, शाम के 6:08 के करीब होने आ रहे हैं।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और ऐसे में मस्त मौला गौरव ने सोचा क्यों ना एक बार फिर से चला दूं मैं अपनी गानों वाली
2: गानों की मिक्सी
0: में आज एक बार फिर से दो गानों को पीस दिया है। आइए सुने कौन से गाने। आए हाय, ये गानों की मिक्सी में आज तो जबरदस्त दो गाने मिक्स हो गए। जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब देना है और एक बार फिर से इन दोनों गानों को देख लीजिए, सुन लीजिए। हाय, दो गानों को पीस दिया मैंने 5000 1896 पर। गानों के बारे में बताना आपको कौन से दो गाने मैंने इस वक्त मिक्सी में डाले हुए हैं 5000 1896 पर। मेरी गानों की मिक्सी में आज कौन से दो गाने गए हैं यही आपको बताना है। एक बार फिर से अगर कहिए तो सुना देता हूँ, लेकिन मुझे अगर ये मिलता तो बहुत आसानी से बता देता कौन से दो गाने मिक्सी में मैं पीस रहा हूँ। हाँ जी, 5000 1896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है आपके जवाबों का। वॉइस नोट में जवाब भेजना, मैं देख रहा हूँ आप लोग लिख के भेज रहे हैं, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दीजिए, इतनी मधुर प्यारी सी आवाज है, जरा कतर को भी सुनने दीजिए। अरे फोन कर रहे हैं, रिकॉर्ड करिए 5000 1896 पर। लेकिन फिलहाल श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल की आवाज में बस एक धड़क धड़क गाना।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Grabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: कटी? कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी, पर्स काटी ऊपर से, तो फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: तुम्हें एड्रेस दे दे अपना, वो कर दे, मैं कॉल कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: का सिंह शेफाली की आवाज में ये गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: और जब मैं आपके साथ हूँ तो ये बता दूँ कि इस घंटे हम खेलते हैं गानों की मिक्सी वाली मिक्सी।
2: गानों की मिक्सी।
0: और गानों की मिक्सी में दो गानों को पीस देते हैं, जैसे आज पीसा है। पर अपना जवाब लिखकर भेजने को नहीं कहा था, रिकॉर्ड कर भेजने को कहा था, लेकिन जिन लोगों ने रिकॉर्ड करके भेजा है, सबसे पहले मैं उनकी आवाज सुना दूं।
3: हेलो, आई एम स्नेहा यार
0: जी।
3: पहला सॉन्ग है सोने सोने पटोले लखा, और दूसरा सॉन्ग है आँख मारे।
4: Hi Gaurav, how are you? Hi, this is KP Vashisht, and I believe the songs are first is Baby Doll and second is ये लड़की आँख मारे।
0: लेकिन सबसे पहले लिख कर भेजा था त्रिशा ने बेबी डॉल एंड लड़की आंख मारे। इसके बाद फिर एक और ने लिख कर भेजा, इनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वर्धा। यस, वर्धा ने भी एकदम सही जवाब दिया। इसके अलावा राशिद भाई ने भी लिख कर कहा है आंख मारे बेबी डॉल। इसके अलावा अतुल है जिन्होंने लिख कर भेजा है बेबी डॉल एंड आंख मारे लड़की आंख मारे न्यू। हाँ, बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो यस, मोहम्मद भाई ने लिख कर भेजा आंख मारे लड़की आंख मारे, नहीं दूसरा गाना भूल गए भाई साहब आप, एक गाना नहीं है दो गाने हैं, मैंने यही कहा था। रंजीत भाई, दोनों गाने लिखे हैं लड़की आंख मारे एंड बेबी डॉल सोने दी, बिल्कुल मिलाकर। इसके अलावा एक आयुष का जवाब आया, आयुष ने लिखा बेबी डॉल सोने दी एंड यस आंख मारे। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे लकी भाई को जिन्होंने लिखा है दोनों ही गानों का नाम, यानी कि आंख मारे एंड बेबी डॉल। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए भाई। यार मतलब मिक्सी में कुछ भी पीस दो लेकिन लोग पकड़ ही लेते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन से थे। फिलहाल अगला गाना दिलजीत पाजी की आवाज में ढी के साथ नैन मटक्का करेंगे। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
2: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
6: Love is my biggest fear because for me love is death.
5: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
5: Catch Officer Brown.
8: Officer Brown
5: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
9: अर्ज किया है
10: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
2: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: है कुछ इंसान जो अभी भी करते हैं बड़ा बड़ा काम।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है। और यूं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अच्छा करते हैं और आप तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में बहुत ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी उम्मीद ज्यादा लोगों ने की नहीं होती है। और एक ऐसे ही काम किया है कर्नाटका के इंसान ने, यस इंडिया के कर्नाटका के एनके गौड़ा साहब। ये एक रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर थे, यानी कि किसी फैक्ट्री में काम करते थे, फिर वहां से रिटायर हो गए, लेकिन अपना पूरा घर सिर्फ इसलिए बेच दिया ताकि वो एक लाइब्रेरी बना पाए, और वो भी एक दो किताबों की नहीं, 2,20,000 किताबों की। क्या बात है, 2 million बुक एंड दैट टू फ्री फॉर ऑल। और इसीलिए इनको कल पद्मश्री से नवाजा गया है। इंडिया का वन ऑफ द सिविलियन ऑनर होता है, और ऐसे में पद्मश्री मिलना अपने आप में एक सम्मान है, 4th highest सिविलियन ऑनर। एंड खुद इनको ये ऑनर CMD के शिवकुमार साहब ने दिलाया है। एंड कहा ही जा रहा है कि इनके लिए अब 2 acre लैंड अलॉट की जा रही है, साथ ही साथ 5 crore रुपए से एक सुपर प्रॉपर लाइब्रेरी का सेटअप किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैंने ये लाइब्रेरी बनाने की सोची क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ और मैं कभी किताबों को पढ़ नहीं पाया। सोचिए, AI की इस दुनिया में कोई है जिसे किताबों से इतना प्यार है कि उसने अपना घर मकान बेच दिया ताकि वो किताबों के अपने शौक को पूरा कर पाए और पूरी दुनिया को ये बता पाए कि किताबें ही असली माध्यम है आप अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं। भाई साहब, आपके लिए तो सच में तालियां बनती हैं यार। एंड उम्मीद यही है कि आप किस लाइब्रेरी में अगर हम भी 2-4 बुक डोनेट कर पाएं तो अगली बार इंडिया आकर ज़रूर करेंगे, क्योंकि किताबों से वैसे तो हमको बहुत प्यार है, लेकिन अगर वो मैगज़ीन है तो, कॉमिक बुक है तो, क्योंकि अपने स्कूल वाली किताबें हम पढ़ नहीं पाए ज़्यादा, वरना और कुछ कर रहे होते। अच्छा ही वाह, रेडियो जॉकी हैं, ये कोई कम है मिर्ची, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
5: Hi.
4: How are you feeling right now?
5: The Josh is high. I am excited a lot.
4: How's the feeling?
5: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था। सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

अभी कभी ना कुछ दूसरों के लिए कर देखो, मजा आता है। ऐसे ही एक मौका आपके लिए लेकर आए हैं मैंगलोर कल्चरल एसोसिएशन, जो कि फ्री मेडिकल चेकअप कैंप एंड रेड ड्रॉप कैंप के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, जो वो लेकर आए हैं अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन के साथ। यस, फ्राइडे जून 26 यानी कि परसों आप सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक सी रिंग रोड रियादा मेडिकल सेंटर में जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और दोनों ही इवेंट सेम वेन्यू पर हो रहा है, यानी कि आपको मेडिकल चेकअप की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पर टेस्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एसजीओटी, एसजीपीटी सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी 7 घंटे के तक की नींद लेनी है एंड फास्ट अप टू 8 to 10 आवर्स। उसके बाद आप मैंगलोर एसोसिएशन के सोशल मीडिया हैंडल पर जाओगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रेड ड्रॉप कैंप, जहां पर आप कर सकते हो ब्लड डोनेट, एंड उसके लिए भी आपको एक लाइट मील लेनी है, अच्छी सी नींद लेनी है और तब पहुंचना है इस ब्लड डोनेशन कैंप में। याद रखिए, इसी फ्राइडे दैट इज 26th of June सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक सी रिंग रोड पर रियादा मेडिकल सेंटर में ये हेल्थ कैंप आपके लिए लगा है, जहां पर आप ब्लड भी डोनेट कर सकते हो। और जब ये मौका आता है तो मैं यही कहता हूं कि ये किसी के लिए कुछ कर पाने का मौका है बिना किसी को कुछ बताए। यस, और मैं हर बार कहता हूं, जरूरी नहीं है कि सुपर हीरो हर बार कुछ अतरंगी कपड़े पहनकर या ये अपने अलग से केप में आए। कभी कभी आप ऐसे शांति से जाकर ब्लड डोनेट कर भी किसी फैमिली के लिए सुपर हीरो से कम नहीं होते, क्योंकि आपके एक बूंद खून का कतरा किसी का जीवन बचाता है और उस फैमिली के लिए कितना सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देता है। सो डू डोनेट ब्लड। एंड ये मिथ है कि ये सब करने से दिक्कतें होती हैं, कुछ नहीं होता सर, आपके लिए तो ये मौका है कुछ अच्छा करो और अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा बटोर पाओ। एनजी मस्मोला गौरव कहेगा, याद रखना मैंगलोर कल्चरल एसोसिएशन आपके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लेकर आया है। इस फ्राइडे आपको सुबह जाना है तो जरूर जाइए एंड मस्मोला गौरव को सुनते रहिए मिर्ची पर, क्योंकि ऐसी बातें हम ही बताते जहां आप पुण्य कमाते। मिर्ची थॉट।

0: भैया अब हमारे कतर के वेस्ट रीजन में अंडरग्राउंड बिजली होगी। यस मिर्ची घड़ी में शाम के 7:05:50 से लगभग।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यस यहाँ बताना चाहूंगा, कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन कहरामा ने अभी भी एक डील साइन कर दिया है। इस डील साइन में कुछ जदीद प्रोजेक्ट, बोले तो नए प्रोजेक्ट हैं, जिनका एम है कि वो यहाँ पर और बेहतरीन बनाए और डेवलप करें इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को वेस्टर्न रीजन में। यानी कि यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन का एरिया है, दुखन एरिया का रीजन है, दुखन का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसको नेशनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क से वेस्टर्न रीजन में कैसे जोड़ा जाए, इस पर अब जबरदस्त काम होने वाला है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग सबस्टेशन, यानी कि जो सबस्टेशन होते हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, और इसके अलावा अंडरग्राउंड केबल्स एंड ओवरहेड लाइंस, इनको भी एक नए नेटवर्क के तहत बिछाया जाएगा। और ये करामा एंश्योर कर रहा है कि एक बेहतरीन एफिशिएंट इंटीग्रेशन होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड तक पहुंचाएगा, यानी कि आने वाले टाइम में हम रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेंगे। एंड कतर इसके लिए लगभग 2.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, कतरी रियाल का अमाउंट स्पेंड करने वाला है। एक बड़ी चीज होने जा रही है हमारे कतर में, इतना जरूर कहेंगे। हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला बिन अली अल थयाब जो कि प्रेसिडेंट हैं कहरामा के, उन्होंने ये सब कुछ बताया है। जनरल इलेक्ट्रिसिटी वाटर कॉर्पोरेशन अब इस पर काम करने जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इन द वेस्टर्न रीजन, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। तैयार रहिए, क्योंकि एक मुल्क की तरक्की में ही उसमें काम करने वालों की तरक्की बंधी होती है, लिखी होती, और हमारे लिए कतर जब ऐसे काम कर रहा है तो हमारी भी तरक्की आने वाले टाइम में होगी, हम यही उम्मीद करेंगे। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirci, burka.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार
2: रिक्शा,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
3: Yeah, pagal.
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
5: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: है देखिए इस गाने का हमारा अपना वर्जन है अरिजीत सिंह जी के अलावा, कि बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तो स्कैमर कॉल करेगा। और इसी बात को हमें याद दिलाने के लिए वॉर्न किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। बहुत सारे मजदूर भाई होते हैं जिनको लोग झांसा देते हैं कि हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, बस तुम हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हमें ये याद दिलाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रिलेटेड अगर कोई भी फी या पेमेंट है तो वो उनके ही उस हैंडल पर होती है, ऑफिशियल हैंडल पर, ऑफिशियल अप्रूव्ड जो चैनल है जो कि mol.gov.qa है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का mol.gov.qa। इसके अलावा अगर कोई भी अपने प्राइवेट अकाउंट में पैसे भरवा रहा है तो वो स्कैमर ही है। और मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि अपनी कभी भी बैंकिंग या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑफिशियल एंटिटी से शेयर मत कीजिए, चाहे वो कितना भी माहौल बना के कि मैं कतर पुलिस से बोला, मैं फलाना डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, फटाफट हमें अपना डिटेल दो। एंड वो आपसे अरबी में भी बात कर सकता है, आपको डरा सकता है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि यार ये आदमी मुझे लीगल नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बस तुरंत उसका फोन काट दो। किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन कोड, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी शेयर ही मत करो, और तुरंत उस नंबर के बारे में कॉन्टैक्ट कर बताओ हॉटलाइन नंबर 16505 पर। याद रखो 16505 ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नंबर आपके लिए दिया है, जहां पर आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हो हॉटलाइन पर, और ऐसी किसी स्कैम कॉल के बारे में तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हो info@mol.gov.qa info@mol.gov.qa। ये कुछ जगहों पर आप रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी इंसिडेंट की, लेकिन कभी भी घबरा कर किसी को अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है, ये याद रखना है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बोला मजदूर भाइयों आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके पैसों को कहीं और चंपत करा के ले जाई। 89.6 मिर्चीवन पे जो कहते भैया तो समझा, सावधानी बरतिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनी जेब को भी। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये लत होती है आम खाने की लत। अरे वरना ऐसे कैसे इतना टन आम बिक जाएगा और पिछली बार का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। यस
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन मैंगो एग्जीबिशन जो कि सूख वाकिफ में चल रहा है वहां पर पब्लिक टर्नआउट बहुत ही ज्यादा है। और थर्ड हम्बा इंडियन मैंगो एग्जीबिशन में हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक 84 टन आम बिक चुके हैं। यस, यानी कि अगर 5 दिनों का आंकड़ा नोटिस किया जाए तो लास्ट ईयर हम इस समय तक 56 टन बेच पाए थे, लेकिन इस बार पहले ही 5 दिनों में 84 टन आम बिक गया है। 74,000 विजिटर्स इन फर्स्ट 5 डेज में वहां पहुंचे हैं, जो कि पिछली बार 52,000 था। यानी कि इस बार ये जो 1 लाख वाला आंकड़ा मैं मान के चल रहा हूं, ये इस वीकेंड आने से पहले ही लग रहा है पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर कल हम भी वहां पहुंचे थे, हमने क्या किया क्या नहीं सब आपने रेडियो पर सुना था, और अगर आप मिस कर गए तो कोई नहीं, आज भी सुनाएंगे। लेकिन इतने सकता हूं, स्वाद का चटकारा, मैंगो का सारा नजारा, और मैंगो डोसा से लेकर मैंगो मोमोज तक, मैंगो चिकन टिक्का से लेकर मैंगो के नए नए डिशेस, सब कुछ आपको यहां मिलता है। तो जरूर जाइए, शाम 4 बजे खुल जाता है। एंड बड़ी बात यह है कि आप यहां जाएंगे तो आप कहेंगे अमा यार मैंगो की इतनी वेराइटी हमने पहले तो नहीं देखी, यहां आपको मिल जाएगी। जाइए खरीदिए, अपने आप को खास फील कराइए ये आम खरीद कर। मिर्ची इट्स हॉट।

Yalla, yalla, ta, yalla, nabi, dal, goal. आज रात 10 बजे हमारी और आपकी दुआएं रंग ला सकती है और अल्लाह नबी आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज कतर वर्सेस बोस्निया का मैच है। कतर के पास मौका है आज इस ग्रुप में अपनी एक जीत बनाने का, और ये जीत बन सकती है क्योंकि हमारे अलावा एक मैच खेल लेंगे कनाडा एंड स्विट्जरलैंड की टीम भी, और सभी टीमें अभी एक एक मैच जीती हैं। एंड ऐसे में स्विट्जरलैंड कनाडा जहां एक मैच जीती है, आज एक मैच हारेंगी दोनों में से एक टीम। और अगर कतर ने गोल डिफरेंस को कम किया और माहौल बनाए रखा, यू नेवर नो, हमारा अल नाबी आगे राउंड ऑफ 32 में जा सकता है। अ बिग चांस फॉर टीम कतर, एंड आई एम श्योर ये वो मौका है जब हम चीयर अप करेंगे अपनी अल नाबी को, मरून एंड व्हाइट को, एंड बता देंगे दुनिया को कि क्यों है हम एशियन फुटबॉल के चैंपियन। 89.6 मिर्ची 1 पर, ऑल द बेस्ट टू टीम अल नाबी मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, golden summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
6: Hi.
5: How are you feeling right now?
6: The josh is high. I am excited a lot.
5: The feeling
6: is immense. I cannot tell you in words कैसा feel हो रहा है. बहुत बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने talented थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है, अब तेरे को बोलने परेशानी हो?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्ती उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: बाय गॉड सच बताना, आपके शोल्डर्स डांस कर रहे थे ना बैठे बैठे इस गाने को सुनते सुनते। ये यार यही तो कमाल की बात है ना, सच अ बम्पिंग थम्पिंग ट्रैक, नच बलिए फ्रॉम द फिल्म बंटी बबली, शंकर महादेवन का माइंड ब्लोइंग म्यूजिक, लेकिन जब लिरिसिस्ट हों गुलजार साहब तो वो इतने मजेदार गाने में भी क्या लिख रहे हैं सुनिए। हर कदम ये ख्वाबों का बिछौना है, खेल खेल ये किस्मत तो खिलौना है, दाव लगा दाव पर किस्मत खड़ी पांव पर चलवे। जब हम नाच रहे होते हैं ऐसे गानों पे तो हम सोच रहे होते हैं कि ओ ये इतने इंटेंस लिरिक्स हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और यही मैजिक है यार, कमाल है हमारे लिरिसिस्ट का। कभी कभी ना मैं ऐसे एकदम माइंड ब्लो हो जाती हूँ और मेरे को लगता है कि आपको बताऊं कि देखो क्या मैजिक चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो एक डांसिंग ट्रैक से निकल के दूसरे डांसिंग ट्रैक में घुस रहे हैं हम अभी यहाँ पर। शंकर महादेवन का गाना अगेन, एंड ये जो फिल्म है ये मेरी फॉर एवर फेवरेट फिल्म है। इसके सारे कैरेक्टर्स की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। फिलहाल मैं एक बताती हूँ आपको मजेदार सी कूल सी बात अबाउट दिस सॉन्ग। सो ये गाना बड़े सारे लोगों ने मिलकर गाया है और इस गाने में पिक्चराइज्ड हैं तीनों दिल चाहता है के कैरेक्टर्स, आमिर, अक्षय खन्ना एंड सैफ अली खान। तो जब ये गाना बन रहा था, शान वाज अबाउट टू सिंग अक्षय खन्ना वाला पोर्शन, लेकिन सडनली फरहान अख्तर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको लगा कि नहीं यार ये सैफ अली खान से ना शान की वाइब और एनर्जी ज्यादा मैच हो रही है, सो उनको उनका पोर्शन गाने देते हैं। और उसके बाद जब गाना रिलीज हो गया तो फरहान ने एक्चुअली लोगों को उल्लू बनाया कहकर कि वो पार्ट ना सैफ ने खुद गाया है और लोगों ने यकीन भी कर लिया। So, आप सोच रहे हो ये लिरिसिस्ट और म्यूजिशियंस और इन सब का कितना कमाल का बैकिंग काम होता है ना किसी भी फिल्म या गाने के ऊपर, जिसको हम सुनकर बस मस्ती से नाचते रहते हैं। सो यस, गेटिंग इनटू दिस ट्रैक, कोई कहे कहता रहे, ओनली ऑन मिर्ची कैफे विद मी पारुल। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ ब्रेक के बाद।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: होगी पार्टी। अच्छा अब ये सुनो, व्हाई डिडंट द स्केलेटन गो टू द पार्टी? एक स्केलेटन पार्टी में क्यों नहीं गया? बिकॉज ही हैड नो बॉडी टू गो विद। स्केलेटन था ना, ही हैड नो बॉडी टू गो विद।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और इससे पहले कि आप मुझे मारने के लिए ढूंढो, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अभी आपने गाना सुना, अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद, यार इसकी वाइब बहुत ही निराली थी। उस वक्त ना बहुत सारे ऐसे फिल्मी वाले ही गाने आ रहे थे और ये जब आया था तो अचानक से एक इंडिपेंडेंट कमाल का गाना आ गया था। एंड बादशाह ने इसमें अपेरेंटली मयूर पुरी के साथ लिरिक्स भी खुद लिखे हैं एंड कॉम्पोजिशन भी उन्हीं की है। अगला गाना आपके लिए फिलहाल एक और पार्टी मूड का लेकर आई हूँ। और ये गाना जो था ना, इसमें अपेरेंटली रितेश देशमुख ना शेप में आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग, उनको ऐसे ग्रूव करना था इस गाने पे, इसलिए। तो इस गाने में ना ऐसे एक पिक्यूलियर सा बीट है, डम टटक डम डम। अभी आप सुनोगे, मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ, सुनाती हूँ आपको ये गाना। कहीं मत जाना, स्टे ट्यून्ड हियर ऑन मिर्ची कैफे। आप सुन रहे हैं मेरे यानी पारुल के साथ ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
1: Hi.
2: How are you feeling right now?
1: The Josh is high. I am excited a lot.
2: How's the feeling?
1: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है. लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे. मैंने अपना 100% डाल दिया था. सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. थैंक यू सो मच.

0: माय गॉड, कुछ लोग ना इतने मैजिकल हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही अपने वक्त से बहुत आगे पहुंचकर इतनी एक्सपीरियंशियल चीजें कर ली हैं कि आज तक अगर हम उसको ऐसे बाइफरकेट करें ना, हम नहीं कर पाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन A.R. रहमान सर एंड तालका म्यूजिक। ये जो अभी अभी आपने गाना सुना है ऑन मिर्ची कैफे, मैं हूँ आपके साथ पारुल, ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची कैफे।
0: मतलब आप यकीन कर सकते हैं ये जो गाना है कहीं आग लगे लग जावे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष घाई खुद ही अपनी फिल्मों में बहुत ख्याल रखते हैं कि क्या म्यूजिक यूज हो रहा है। पहली चीज, उन्होंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रहमान सर को दे दिया कि भाई तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, देर आर क्लैप लूप्स इन दिस सॉन्ग कहीं आग लगे लग जावे। एक होता है 4x4 बीट, ठीक है, जो मोस्टली बॉलीवुड में सब जगह यूज होता है, उसको ब्रेक किया इस गाने ने। तीसरी चीज, और एक होता है स्टेकेटो फॉर्म ऑफ म्यूजिक और एक होता है लिगेटो। तो जो लिगेटो होता है ना, दैट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मोस्टली सब यूज करते हैं। स्टेकेटो होता है बिल्कुल शॉर्ट, शार्प और डिटैच्ड। तो ये फॉर्म यूज हुआ है इस गाने में। ये तो हुई सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात। अगर आप कहीं आग लगे लग जावे का विजुअल याद करोगे या कभी देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो आप ये देखोगे कि इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस चल रहा है वहां पे ऐश्वर्या राय बच्चन। हैट्स ऑफ टू हर। दिस इज टिल डेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स जो हमेशा हर चीज में अव्वल नंबर पे रखती हूँ मैं। व्हाट अ सॉन्ग गाइस। ऐसे गाने जो बनते हैं ना, तो वो साल नहीं, वो ऐसे सदियों लाखों जमानों तक चलते हैं और उनकी पहुंच कहाँ कहाँ तक जाती है और हमेशा अमेजिंग लगते हैं। एंड ऑन दिस नोट आई रियली नीड टू काम डाउन एंड से कि अब मेरा जाने का वक्त यहाँ से हो गया है, क्योंकि अब अगले एपिसोड के लिए मैं आपके लिए गाने तैयार करने के लिए जाने वाली हूँ। अगर आपको कोई गाना ऐसा सुनना है जो आपके दिल के बड़ा करीब है, तो प्लीज मुझे लिखिए। आप मेरे मिर्ची के व्हाट्सएप नंबर 9930983983 पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो parul.world। प्लीज मुझे बताओ आपको कौन सा गाना सुनना है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टेल समथिंग अबाउट दिस शो, आप मुझे कोई इनपुट देना चाहते हो, प्लीज राइट इन टू मी। और मैं यहाँ पर अगला गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, विच इज इन द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ हर्षदीप कौर। ये भी ना गाना जो है, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके बड़े सारे मीनिंग है। सूफिज्म में इसका मीनिंग है कि सारी रात चरखा कात रही हूँ तेरे इंतजार में, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट, इसका मतलब है कि सारी रात काट रही हूँ बस तेरे इंतजार में। तो मैंने ये गाना आपके लिए आखिरी आज के एपिसोड का इसलिए चलाया है कि आप भी मेरा इंतजार करो अगले एपिसोड तक, और मस्ती करो, खुश रहो और सुनते रहो मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यार कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

अरे हम आए और आप चल दिए, ये क्या बात हुई? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना, और मैं सोच रही थी कि इस तरह के कैसे नाम होते थे ना पुरानी फिल्मों के, आन मिलो सजना, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आप आए बहार आई, आया सावन झूम के, झूमते गाते मस्त मोहब्बत में रहते थे ये लोग। और आजकल की फिल्में एनिमल, धुरंधर, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, टाइम टाइम की बात होती है यार। उस टाइम वो चलता था, इस टाइम ये चल रहा है। और आने जाने पे मुझे एक लाइन याद आई, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अभी मैं थोड़ी भीड़ कम करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल गाना सुनेंगे हम पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन।
6: It's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, only on

भी किसी रेडियो स्टेशन पे चलता है तो वो रेडियो स्टेशन पे काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी घबराहट दे देता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हमारे ना क्या होता है कि रेडियो पे गाने चलते हैं, एड्स चलते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। जहाँ पे कुछ साइलेंस आ जाती है ना, एकदम सन्नाटा कुछ हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेड एयर, जो नहीं होनी चाहिए। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ ना, रजिया सुल्तान का ए दिले नादान, उसमें टुवर्ड्स एंड जहाँ पे लिरिक्स आते हैं, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है, उसके बाद 4-5 सेकंड का ऐसे पॉज है, साइलेंस, फिर वहां से गाना पिक करता है, ये जमीन चुप है, आसमान चुप है। तो उन लिरिक्स को वजन देने के लिए वो साइलेंस, वो पॉज वहां पे डाला गया है। लेकिन इनकी तो क्रिएटिविटी हो गई, हमारी तो मौत आ जाती कि है रेडियो बंद हो गया क्या, गाना क्यों नहीं चल रहा, आवाज क्यों नहीं आ रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: चीज विद चारू ओनली ऑन

0: मजा आया क्योंकि एक और पुराना गाना रीमेक बनकर चर्चा में आया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और ये गाना है 1981 की फिल्म अरमान का दिस सुपर हिट सॉन्ग।
1: रंबा हो
0: डिस्को वाला गाना है, बताने की बात नहीं है कि बप्पी लहरी साहब ने इसे कंपोज किया है। श्याम लाल बाबू राय कॉमनली नोन एज इंदिवर साहब, उन्होंने लिखा है एंड गाया है, क्या गाया है, उषा उत्थुप जी ने। वैसे ये गाना सैंपल किया गया है, एक्चुअली कॉपी किया गया है बोल सकते हैं, फ्रॉम अ 1979 सुपरहिट सॉन्ग, एक फ्रेंच म्यूजिकल ग्रुप ने जो रिलीज किया था, के सेरा मी विदा, ये वाला। वैसे रामबा हो में ना 70s के एक अमेरिकन गाने का म्यूजिक भी थोड़ा सा लिया गया है, द सॉन्ग कॉल्ड आई फील लव बाय डोना समर्स, जिन्हें क्वीन ऑफ डिस्को भी कहा जाता था। खैर हम अपने वाले पे आते हैं, आप इस गाने का वीडियो देखेंगे ना तो बहुत ही फेस्टिव सेलिब्रेटरी कलरफुल सा वाइब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आमिर खान पीके वाज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान छिल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजियर हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

ये गाना मेनली लता मंगेशकर जी एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने गाया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसमें दो आवाजें और हैं, शैलेंद्र सिंह एंड उषा मंगेशकर जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उषा मंगेशकर जी ने ज्यादा गाने गाए नहीं, हिंदी फिल्मों में नहीं गाए, लेकिन मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो शी इज अ लेजेंड। इनफैक्ट इस साल उन्हें फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और भी कई भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। कुछ हिंदी फिल्मी गानों के लिए भी उनको अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था, जैसे कि 1977 की इनकार फिल्म का ये गाना, कंपोज्ड बाय राजेश रोशन, रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी एंड सन बाय उषा मंगेशकर जी। जी सुनते हैं यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: मिल गया मैडम। आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं। आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए। जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू। हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू। मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: टेंडर मैं तो चला किचन के अंदर। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड इफ यू नो ये कैलेंडर कौन है, ये मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर है। 1987 में ये आइकॉनिक मूवी रिलीज हुई थी एंड दिस किरदार कैलेंडर क्या प्ले किया था सतीश कौशिक साहब ने। और सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कहां से आया था ये किरदार,
1: कैसे कैलेंडर बना। वो मेरे फादर के डीलर थे, वो तकिया कलाम था उनका, कि वो कैलेंडर बीच बीच में बोलते थे, पंडित जी क्या बात है, तीन पेटियां आई और तीन पेटियों में से कैलेंडर एक पेटी तो खराब निकली, अभी 2 लाख का बाल कैलेंडर खराब हो गया। तो कैलेंडर बीच में बोलते, कैलेंडर वर्ड वहां से आया। एंड दैट इज हाउ कैलेंडर्स नेम वॉज दिस थिंग। फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेम्बर कि इसको थोड़ा सा फेमिनिन बनाना है, और वो परचून की दुकान पे सीन था, एंड एवरीबॉडी वॉज इन लाफ्टर व्हेन आई डिड दैट, यू नो।
0: और क्या ही डायलॉग्स लिखे हैं सलीम जावेद ने, याद है इसमें अनिल कपूर का किरदार अरुण भैया इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कैलेंडर क्यों रखा, तो वो बोलते हैं कि जी वो इंग्लिश में कुछ नाम रखना चाहते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

काश जैसा इनके साथ हुआ हमारे साथ भी हो जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ माला माल फिल्म के नसीरुद्दीन शाह साहब के किरदार की। ये 1988 की फिल्म है माला माल, विच इज बेस्ड ऑन 1985 की हॉलीवुड फिल्म ब्रूस्टर्स मिलियंस, जो अगेन एक नॉवल पर बेस्ड है। इस सब्जेक्ट पे कुछ 6 फिल्में बन चुकी हैं। तो अपने वाले की बात करें तो इसमें ये होता है कि एक लुखे लफंगे गरीब से लड़के को अचानक से उसके करोड़पति दादाजी की दौलत मिल जाती है, 330 करोड़ रुपए। लेकिन शर्त यह है कि उसको 30 दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तभी उसको 300 करोड़ मिलेंगे। अभी इस चक्कर में क्या क्या होता है, इट इज अ फन वॉच। मतलब काफी खामियां हैं फिल्म में, लेकिन तो भी एक बार तो देखे जा सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ नसीरुद्दीन शाह साहब्स एक्टिंग। साथ में सतीश शाह साहब भी हैं, वो भी मजेदार हैं। तो कभी मौका मिले तो देखिएगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100/100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

तो मैंने देखी 1979 की फिल्म नौकर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है संजीव कुमार साहब, जया भादुरी एंड महमूद। अब एक्टर्स इस कैलिबर के हैं तो परफॉर्मेंसेस तो अच्छी होंगी। यस, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, इसीलिए फिल्म एंटरटेनिंग है। तो सीन कुछ यूं होता है कि संजीव कुमार साहब एक सिंगल फादर प्ले कर रहे हैं जो दूसरी शादी नहीं करना चाहते, इस डर से कि उनकी जो छोटी सी बेटी है उसकी स्टेप मदर उसको ढंग से ट्रीट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उनकी फैमिली उनको शादी करने के लिए कन्विंस करती है। अब जब ये लड़की देखने जाते हैं तब क्या चक्कर चलता है मालिक नौकर का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है। और एक्चुअली आई वाज लाइकिंग जया भादुरी जी की परफॉर्मेंस। व्हेन आई रेड अबाउट इट आई गॉट टू नो कि इस फिल्म में उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो मेरी तरफ से एक फन लाइट मूवी है ये, जिसे आप देख सकते हैं। थोड़ा ड्रामा भी है क्योंकि इसमें ललिता पवार जी भी हैं, बट देख सकते हो। रिकमेंडेड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: It's hot.

0: वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विटियस्ट एक्टर्स इंडियन सिनेमा के थे फारूक शेख साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उनकी शुरुआती फिल्मों में से थी सुपरहिट फिल्म नूरी, जिससे वो और पूनम ढिल्लो दोनों बहुत पॉपुलर हुए। पूनम ढिल्लो की आई थिंक वो दूसरी फिल्म थी। तो उनसे ना बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया कि नूरी फिल्म से पूनम ढिल्लो के पैर जो है वो तो फिल्म इंडस्ट्री में जम गए, लेकिन ये थोड़े से फिसल गए क्योंकि उनका करियर उतना नहीं चला था इस फिल्म के बाद। तो इस सवाल के जवाब में सुनिए फारूक शेख साहब ने क्या कहा।
1: दरअसल नूरी के बाद जो है मैंने पूनम से पूछ लिया था कि वो अपने जूते कहाँ बनवाती हैं ताकि मेरे भी पैर खूब जम जाएं। तो दो साल तक मैंने नूरी के बाद कोई फिल्म साइन नहीं की, मैं इसी की तलाश में था कि कहाँ से बनवाऊं। फिर दो साल के बाद मैंने सई परांजपे के साथ चश्मे बद्दूर की, जो खुशकिस्मती से बहुत चली और मकबूल हुई, और उसके बाद फिर उमराव जान की वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर जो है पूनम जी अपनी जगह जमी रही और मैं अपनी जगह चलता रहा।
0: भाई मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ फारूक शेख साहब की। मैं तीन फिल्में उनकी सजेस्ट करूँ आपको देखने को। ये फिल्में हैं पीछा करो, किसी से ना कहना और अब आएगा मजा। मजा आ जाएगा आपको ये फिल्में देखकर। खैर यहाँ पर हम नूरी फिल्म का गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Irani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं?
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: yeah, पगला।
5: 89.6
3: मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

कि देवानंद साहब को मुच्छी लगाने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कुछ फिल्मों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1975 की फिल्म वॉरंट का ये गाना, जिसमें देवानंद साहब पे जो मूछों वाला लुक है ना, वो somehow मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। बहुत ही क्लाउनिश कैरिकेचरिश लग रहे हैं वो। और मुझे हैरानी है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि देवानंद साहब को ना मूछे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको अपना क्लीन शेवन लुक पसंद था और उनको नकली मूछे लगाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए किसी रोल के लिए अगर मूछ चाहिए भी होती थी तो वो अपनी उगा लेते थे। लेकिन ये वाले गाने में और एक और गाना था गैम्बलर फिल्म का, दोनों में जो मूछे उनकी दिख रही है ना वो नकली दिख रही है। इसमें तो खास करके जैसे वो चाचा चौधरी की मूछ लगी वो बिल्कुल ऐसी लग रही है। खैर कई बार हो जाते हैं गूफ अप, वो क्या बोलते हैं, फैशन फॉर पा, फैशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। द फैक्ट रिमेन्स दैट देवानंद साहब वॉज एक्सट्रीमली चार्मिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

कई साल पहले यानी कि 1929 में गुजरात के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्योंकि परिवार में जय श्री कृष्णा होता रहता था, बच्चे का नाम जयकिशन रख दिया गया। जी मैं बात कर रही हूँ शंकर जयकिशन वाले जयकिशन की। शंकर जयकिशन वो जोड़ी, वो डुओ जिसने हिंदी फिल्म संगीत को वैसा बनाया जैसा कि हम उसे जानते हैं। इनके म्यूजिक से पहले ना फिल्मी गाने फिल्मों में फिलर्स के जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। इन्होंने वो गाने बनाने शुरू किए जो पार्ट ऑफ द स्टोरी थे। इन्होंने गानों में ऑर्केस्ट्रा का मैसिव इस्तेमाल करना शुरू किया और आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स के लिए एक मिसाल बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: And here we have Mirchi Mommy winner Urmi Mala. How's the feeling?
6: Hi.
5: How are you feeling right now?
6: The Josh is high. I am excited a lot.
5: How's the feeling?
6: The feeling is immense. I cannot tell you in words kaisa feel ho raha hai. Bahut bahut khushi ho rahi hai. और ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ। सब इतने टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे थे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपना 100% डाल दिया था, सो शायद मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच।

इस गाने को ना कहीं पर हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल कहा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में धर्मेंद्र के कैमियो रोल के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, हॉन्टिंग लैक ऑफ प्रेजेंस, मतलब इस फिल्म में उनका किरदार था भी और नहीं भी, क्योंकि वो वहीदा रहमान के किरदार के पास्ट का हिस्सा हैं। ये गाना भी एक्चुअली वहीदा रहमान और धर्मेंद्र पर ही पिक्चराइज्ड है, लेकिन धर्मेंद्र का कभी भी फेस नहीं दिखाया गया है। अलग अलग एंगल से उनको दिखाया गया है, उनकी आवाज सुनाई गई है, लेकिन फेस ठीक से नहीं दिखाया गया है। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है क्यों, नहीं देखी है तो देख लो। और एक्चुअली धर्मेंद्र साहब कितने काइंड हार्टेड थे या सिक्योर थे अपने करियर में, उस टाइम वो बहुत बड़े स्टार थे। और दूसरी तरफ फिल्म के मेन हीरो हम कह सकते हैं राजेश खन्ना, वो नए नए थे, तो भी धर्मेंद्र ने उनके साथ इस तरह का ये कैमियो रोल निभाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

बच्चा बुरा करते हाथ, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उम्र की उठा।